Thank God, it's Friday, दोस्तों. 104.9 FM, फनी जो रेडियो सुन रहे पास से आज, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, मेरा शो. थैंक गॉड इट्स फ्राइडे. और आज फ्राइडे को कल सैटरडे का प्लान बना रही हूँ कि यू डेफिनेटली नीड टू बी इन द रेवोल्यूशन शो ऑफ सोनू निगम. बी रेडी डैलस. इफ यू हैव ओनली हर्ड सोनू निगम थ्रू योर हेडफोन्स, योर कार स्टीरियोज, और योर फेवरेट बॉलीवुड मूवी, लाइव सोनू निगम एब्सोल्युटली कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है. क्योंकि मैंने 4 बार उनके शोज देखे और अभी भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू सी हिम अगेन. सम आर्टिस्ट गिव यू ग्रेट सॉन्ग्स, सम गिव यू ग्रेट परफॉर्मेंस, एंड देन देयर आर्टिस्ट हु गिव यू मेमोरीज. जी, एंड दैट इज सोनू निगम, हु इज दैट वन ऑफ देम. लेट्स सेलिब्रेट द मैन, द एंटरटेनर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली that incredible voice. And how else can we end this tonight on my show, because I want the beginning to be beautiful tomorrow with this song, the iconic. Dallas, get ready, Sonu Nigam live. Bas ye raat gayi.

नहीं तो ये कल है और ये कल ही आ रहे हैं सोनू निगम हमारे बीच फॉर हिज लाइव कॉन्सर्ट. और यू नो ही इज सो ही कनेक्ट सो मच. ये स्टोरी मैं सबको बताती हूँ कि एक बार मीट एंड ग्रीट में व्हेन आई मेट हिम ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड ओ यू वर द वन हु वाज डांसिंग इन फ्रंट. एंड आई वॉज लाइक हाउ कुड ही नोटिस. इतने अंधेरा रहता है स्टेज पर होते हो इतना कुछ परफॉर्म कर रहे हो इट्स वेरी डिफिकल्ट बट दैट्स हाउ ही कनेक्ट्स विद पीपल एंड सो ब्यूटिफुल. और मिमिक्री जो वो करते हैं ना इट रियली टेल्स समथिंग अबाउट्स द म्यूजिशियंस. टू इमिटेट अनदर सिंगर यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर टोन ब्रीदिंग पंक्चुएशन फ्रेजिंग म्यूजिकल पर्सनैलिटी. और वो इतनी छोटी छोटी डिटेल्स पकड़ सकते हैं. ही इज़ ट्रूली अ लेजेंड. मे बी दैट्स ऑल्सो वाई ही कैन मूव सो एफर्टलेसली बिटवीन क्लासिकल रोमांटिक पॉप इमोशनल फुल ऑन बॉलीवुड. मिलेंगे हम उन्हें कल फॉर श्योर. विद दैट वन आज के लिए इतना ही. मूविंग ऑन टू अनदर अनदर टुडेज वर्ल्ड. एकदम मैं तो उस आई एम सॉरी वर्ल्ड में खो गई थी. बट इज अ ब्रांड न्यू सॉन्ग नॉट सोनू निगम बट अ ब्रांड न्यू सॉन्ग फॉर यू. सूरज बुरजात थी आज.

ये प्रेम मोलिया का टाइटल ट्रैक है एंड दिस इज सूरज बरजातिया'स फिल्म दैट इज हिज डायरेक्शन. श्रेया घोषाल की आवाज, निहाल तौरो की आवाज़ें आप सुन रहे थे एंड लिरिक्स है कुमार के. आयुष्मान खुराना एंड शर्वरी इस फिल्म में एंड वन मोर सूरज बरजातिया फॉर यू. दोस्तों बाइंग, सेलिंग, प्लानिंग योर नेक्स्ट मूव, यार मैं हूँ ना नवनीता आपकी रियल्टर फ्रॉम केलर विलियम्स रियल्टी. अभी एक बहुत ही खूबसूरत लिस्टिंग है एंड ट्रस्ट मी आई एम वर्किंग सो क्लोजली विथ दिस लिस्टिंग, सो आई एम टेलिंग यू इट इज़ अ स्टील. अभी बहुत सारे ब्रांड न्यू होम्स है फ्रॉम द बिल्डर्स, बट दिस इज़ एक्चुअली बेटर देन न्यू इन सलाइना. अगर आपके कोई भी रिश्तेदार, आप खुद कहीं से मूव हो रहे हैं आउटसाइड ऑफ स्टेट, यू आर मूविंग, इट्स अ मूव इन रेडी, क्योंकि इसकी प्राइस तो बहुत अच्छी है, बेटर देन व्हाट न्यू बिल्स आर. इट वाज द ओनर गॉट इनटू दिस होम इन जनवरी दिस ईयर 2026, बट ही हैज़ टू रीलोकेट सो ही हैज़ टू सेल इट अर्ली. पर उनके सारा फर्नीचर ब्रांड न्यू, ऑलमोस्ट मोर देन 35,000 के फर्नीचर हैं, वेरी वेरी न्यू, ऑल अपग्रेडेड हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड 15,000 फ्लेक्स कंसेशन भी दे रहे हैं वो अभी आपको. एंड सो आप उसे क्लोजिंग कॉस्ट या मोर्गेज बाय डाउन के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड दिस इज़ बेटर देन अ न्यूली प्राइस्ड होम. इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं 347-449-4242. शोइंग चाहते हैं तो ले सकते हैं टोटली अ ब्रांड न्यू मूव इन रेडी होम विद द हाइएस्ट अपग्रेड्स फ्रॉम द बिल्डर्स. यू नो यू whatever you feel about talking about the quartz town countertop ya fir jo amazing patio hai, everything which the builders give you as upgrades is in this home. It's gorgeous, very very beautiful home. Seeing is believing, and if somebody is looking to move into Salina, there cannot be something better than this.

0: on, sweetie. Oh, puppy ki bajana city.
1: नई नवेली भाभी तबाही दिस वन अ ब्रांड न्यू सॉन्ग यामी गौतम है इस फिल्म में सो दिस इज द सॉन्ग नीति मोहन की आवाज़ सुन रहे थे और उनके साथ है आदिनाथ ब्रांड न्यू मूवी कमिंग सून 104.9 FM फाइन एजर रेडियो सुन रहे हैं

Yes, Naina Veli for you, 104.9 FM, Fun Asia Radio सुन रहे हैं मेरे साथ, मैं आपकी होस्ट 5 से 8, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. वैसे इतना कुछ हम डांस करते हैं, यू नो यू कैन ऑलवेज हर्ट, कभी कभी हो जाता है, फॉल हो जाता है एंड यू गेट इंजर्ड. गाड़ी चला रहे होते हैं मस्ती करते हुए, नहीं भी करते हुए, पर कहीं से कोई आके अचानक से मार देता है एंड यू गेट इंजर्ड इन अ कार, ट्रक और स्लिप एंड फॉल. कोई बात नहीं, जब होता है तो हम परेशान होते हैं बिकॉज देर इज़ लॉट्स ऑफ मनी दैट गोज आउट ऑफ अ पॉकेट इफ़ वी हैव टू ट्रीट आर सेल्व एंड देर इज़ एन अटर्नी हु कैन हेल्प अस गेट ऑल दोज कॉम्पनसेशन इफ़ वी आर रियली सफरिंग. वी नीड टू गेट द मनी फ्रॉम द पर्सन हु हैज़ हिट अस और देर इज़ अ केस अराउंड इट. ट्रैफिक की वजह से लॉ ऑफिसर्स ऑफ उमर ख्वाजा हैं, अटर्नी हु फाइट्स फॉर यू. और ऐसा है कि यू डोंट हैव टू पे हिम एनीथिंग अनटिल अनलेस यू विन द केस. फोन उठाइए, नंबर दबाइए 4693005046 या फिर विजिट कीजिए अटर्नी ओमार डॉट कॉम. ही कम्प्लीटली अंडरस्टैंड्स दैट सच थिंग्स हैपन एंड ही इज़ एबल टू हेल्प यू ड्यूरिंग दीज टाइम्स. एक बहुत ही खूबसूरत गाना है आपके लिए यहाँ पर

0: इसमें राजकुमार राव है, कृति खरबंडा है, आरको का गाना और यासिर, जोगी होना, शादी में ज़रूर आना इज़ दिस ब्यूटीफुल मूवी. पर पता है कास्टिंग बज़ है बॉलीवुड बज़ में, नॉट येट ऑफिशियली कंफर्म, बट रिपोर्ट्स बता रहे हैं राजकुमार राव एंड लापता लेडीज़ की जो एक्टर थी ना प्रतिभा रानता, दे मे लीड धर्मा प्रोडक्शन की फैंटेसी हॉरर फिल्म विश कन्या. जी, और प्रतिभा को रिपोर्टेडली मिल रहा है टाइटल कैरेक्टर विश कन्या का. ओरिजिनल रिपोर्टिंग इंडस्ट्री ने कहीं ना कहीं खबर फैली और हमने उस खबर को पकड़ ली. पर स्त्री के राजकुमार राव अब एक और सुपर नेचुरल दुनिया में कदम रख रहे हैं. रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि विश कन्या की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतज़ार हमें करना पड़ेगा, लेकिन जो खबर आ गई तो फिर उस खबर को हम ऐसे थोड़ी हजम कर जाएंगे. वी हैव टू शेयर इट, क्योंकि हम हैं फन एजा रेडियो. सारी खबरें कहीं पर भी आए पहले आपको बता देते हैं. और शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए. अब शुरू हो रहा है आपका वो गेम शो जिसका इंतज़ार होता है फ्राइडे के फ्राइडे.
1: हिंदी हिंदी बोल,
0: ओय ओय ओय ओय, जमूरे क्या बोलेगा, बोलेगा तो बस हिंदी यार. नॉट अलाउड इज अंग्रेजी. या यू कैन डेफिनेटली स्पीक इन उर्दू, जो आप शब्द डालते हैं क्योंकि बहुत ही क्लोज रहता है. हिंदी और उर्दू गो ओके, बट वॉट इज दिस, इंग्लिश ही घुसाए चले जा रहे हैं. हम उन्हें चुन चुन के निकालेंगे कल हिंदी हिंदी बोल में. फोन उठाइए, नंबर दबाइए, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर.
2: सुर में गाना सीखिए,
0: हम तो सुर में गाएंगे और सुनाएंगे भी.
3: बेवफा छलावत की,

0: सुपर, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम और मेरे पास जुड़ने वाले हैं आशीष। चलिए उन्हें फटाक से ऑन एयर ले लेती हूँ मैं और उनको गल हिंदी हिंदी में जोड़ लेती हूँ। गुड इवनिंग आशीष, आपका स्वागत है गल हिंदी हिंदी पर।
1: गुड इवनिंग, थैंक यू।
0: और सर प्लीज गेट ऑफ योर स्पीकर फोन, अब हमारे पास बहुत कम वक्त है क्योंकि हम ब्रेक में चले जाएंगे। बट योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आशीष, आप क्यों बोले कि आपको ट्राई करना है ये गेम?
1: इससे पहले 2 बार हार चुका हूँ तो इसलिए मुझे अभी जीतना है, प्रयत्न
0: ओ, प्रयत्न
1: करना है। हाँ
0: करना। ओ माय गॉड, वेरी वेरी नाइस। आप 2 बार ट्राई कर चुके हैं फोन करके।
1: हाँ हार हार गया तब।
0: ऑल राइट, डोंट वरी, ऐसे तो हार जीत होती रहती है लेकिन जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। आर यू रेडी फॉर दैट टुडे?
1: हाँ
0: बट यू नो वॉट, आई एम जस्ट गेटिंग इन टू अ शॉर्ट ब्रेक। आई डोंट थिंक आई इवन बी एबल टू टॉक टू यू।
1: मैं फिर से कॉल करूँ आपको?
0: आप कॉल क्यों बोले? हाँ बट कर लीजिए।
2: हीरे मोती मैं ना चाहूँ।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग। हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
4: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
3: आखिर आखिर क्या है इस बिरयानी में?
4: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
5: प्रेजेंटिंग बिरिस्ता हाउस बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर्स एंड अ ट्रूली नवाबी एक्सपीरियंस। नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, डिलीशियस डेजर्ट्स एंड मेनी मोर टू एक्सप्लोर। डेंटन्स फेमस बिरिस्ता हाउस इज नाउ इन फ्रिस्को, 6377 कस्टर रोड, फ्रिस्को, टेक्सास।
6: हैप्पी आवर्स मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 3 PM टू 7 PM।
5: बिरिस्ता हाउस, रिचनेस ऑफ बिरयानी ब्लिस।
7: हेलो, मेरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन का स्टेटस क्या है?
8: सर बढ़िया है, 50,000 इंप्रेशंस, 5,000 व्यूज और हंड्रेड्स ऑफ क्लिक्स।
7: ओके, लेकिन कस्टमर्स कितने आए?
8: वो पता नहीं।
6: एडवर्टाइजिंग का असली रिजल्ट क्लिक्स नहीं, कस्टमर्स हैं। इंट्रोड्यूसिंग स्मार्ट रीच AI, पावर्ड बाय रियल फुट ट्रैफिक एट्रीब्यूशन। विद स्मार्ट रीच AI, रीच लोकल कस्टमर्स, इवन कंपेटिटिव विजिटर्स अक्रॉस रेडियो, डिजिटल, स्ट्रीमिंग टीवी एंड ऑडियो। मेजर कॉल्स, बुकिंग्स, रिडेम्पशंस एंड एक्चुअल विजिट्स।
7: अब हुई ना स्मार्ट मार्केटिंग।
6: विजिट smartreachai.us। स्मार्ट रीच AI, टर्न अटेंशन इनटू कस्टमर्स।
9: स्मार्ट रीच AI, अ पैन एशिया नेटवर्क प्रोडक्ट।
10: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
11: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
10: नहीं।
11: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
10: नहीं।
11: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
10: वो भी नहीं।
11: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
12: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy.
6: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
13: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
14: ये लास्ट दिवाली पहना था, ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर DP है।
15: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
16: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके।
17: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
16: Of course, festive collection par up to 25% off. Tathastu.
6: Discover stunning lehengas, elegant saris, bridal jewelry and festive styles for men and kids, all at Indian Attire on 2995 Preston Road, Frisco. Indian Attire, Frisco, your divine destination for festive fashion.
18: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
19: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
6: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
20: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
21: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
22: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
23: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
24: तुमसे मिलके दिल का है।
22: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
23: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
0: वेलकम स्वागत है आप सबका 104.9 FM फन एशिया रेडियो पर। मैं आपकी होस्ट नवनीता पांसे हार्ट स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। यह आखिरी आधी घंटा है मेरे साथ, लेकिन चलिए लेती हूँ अपने एक कॉलर को फॉर गर्ल हिंदी हिंदी बोल। वेलकम आपका स्वागत है गर्ल हिंदी हिंदी बोल पर। हाय हाउ आर यू?
25: मैं बहुत अच्छी हूँ।
0: वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। मैं भी बहुत अच्छी, आपकी आवाज़ सुन के और खुश हो गई हूँ।
25: मैं भी है ना? मैं पहली बार बात कर रही हूँ। हमेशा मतलब सोचती थी कि मैं भी कभी कॉल लगाऊंगी।
0: मैं भी कभी कॉल लगाऊंगी। वेरी वेरी नाइस, डोंट वरी। अभी आपको ऑन एयर मैंने स्टार्ट नहीं किया था गेम, अभी तक वक्त शुरू नहीं हुआ था, सो इट्स ओके नाउ बिकॉज़ ऑफ दैट। आपका नाम बताइए।
25: मेरा नाम शालिनी कुमारी है।
0: शालिनी कुमारी, मतलब आप शादी शुदा होकर भी कुमारी ही रहेंगी, राइट?
25: जी।
0: ऑलराइट, वेरी नाइस। चलिए आपका वक्त शुरू करती हूँ अभी। शालिनी कुमारी, सो क्यूट, आई लव इट, वेरी नाइस नेम यू हैव। एंड योर सरनेम इज कुमारी?
25: नहीं, मेरा सरनेम शर्मा है। हाँ। शालिनी शर्मा।
0: हाँ, तो सरनेम अंग्रेज छोड़ गए हैं हमारे पास और हमने उसे रख लिया है। वो अंग्रेज ही है, हम हिंदी में सरनेम नहीं बोलते।
25: हिंदी में बोलते, मुझे अब याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं, लेकिन
0: अब पहली बार आपने कॉल किया है, वाह वेरी नाइस। बट आप हार गई हैं, नो वरीज। बट शालिनी, वेरी वेरी गुड ट्राई, पहली बार, यम, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। इसके लिए मुझे आपको ताली देनी है क्योंकि कोई फर्स्ट टाइम ट्राई करे तो वाओ सुपर है ना।
25: थैंक यू,
0: यू हैव अ वंडरफुल वीकेंड। ओके
25: ओके, यू टू,
0: बाय बाय। ये देखिए ऐसा ही होते हैं बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें।

0: किसी ने बोला मैं हुक्को चलिए मोरनी बनके मोरनी बनके। ये हुक्को क्या है, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट लव फूड ब्रांड्स है और अब वो फ्रिस्को में खुल चुका है। आप वहाँ स्टॉप कर सकते हैं फॉर चना पूरी सैंडविचेस करीज और उनकी लेजेंडरी कोल्ड कोको। स्टूडेंट्स को 20% ऑफ मिलता है विद अ वैलिड आईडी एंड एम्प्लॉयज गेट 20% ऑफ लंच पैक्स मंडे थ्रू फ्राइडे ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। बहुत अच्छा है, तो हुक्को में जाइए और चुक्को चुक्को खाना खाइए। विजिट 2693 प्रेस्टन रोड स्वीट 1000। तो फिर मेन्यू देखना है hukko.us पर जा सकते हैं HOCCO। और लेती हूँ अब यहाँ पर मैं अपने एक लिसनर को कॉलर को फॉर गर्ल हिंदी हिंदी बोल। गर्ल हिंदी हिंदी बोल पर आपका स्वागत है। हाय हाउ आर यू?
1: आई एम गुड।
0: वेरी वेरी नाइस। आपका नाम सुमित है?
1: हाँ जी।
0: तो आपका वक्त शुरू किया जाए सुमित जी।
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: Your time has started now. Please don't be on speakerphone or Bluetooth. ये आपको हमेशा से डिस्क्लेमर दिया जाता है और आप उसके बावजूद चले जाते हैं, भटक जाते हैं, क्यों? जब गाड़ी चला रहे होते ना तो दिमाग हमारा रोड पे होना चाहिए, नहीं हो सकता 100% हमारे साथ, है ना? बट थैंक यू सो मच। देती हूँ मैं अपने अगले कॉलर को चांस क्योंकि बहुत ही क्विक था वो। गुड इवनिंग फाइश रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर। आप अपना तो रेडियो तो बंद नहीं करेंगी, मुझे कान में भी सुनेंगी और रेडियो पर भी?
1: नहीं नहीं बंद कर दिया है,
0: सॉरी। वेरी नाइस। ऑलराइट, आपका नाम बताइए। मैं अपने आप को, आपने आपसे बात करी थी, मैं सोची कोई लड़की कॉल की है जो मेरी आवाज थी रियली।
1: अच्छा नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी ने ही लगा के दिया खेलने के लिए।
0: ओह अच्छा,
1: हिंदी हिंदी बोल। हाँ
0: ओके।
1: मेरा नाम तपन साहा।
0: तपन साहा साहब, आप गर्ल हिंदी हिंदी खेलना चाहते हो, आपकी बेटी भी आपके साथ है?
1: हाँ वो पास में ही है, उसी ने मुझे बोला कि खेल के देखते हैं, अच्छा लगता है आपका शो, मतलब हर हर फ्राइडे को सुनती है।
0: वेरी नाइस।
1: तो उसको भी लगा कि हम भी खेलते हैं।
0: हाँ पापा प्लीज ट्राई योर हिंदी, हमें हाँ। प्राउड कराओ कि आप बहुत अच्छा हिंदी बोलते हो।
1: देखते हैं, कोशिश करेंगे।
0: वेरी नाइस। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपकी बेटी का क्या नाम है तपन साहब?
1: मेरी बेटी का नाम तनिष्ठा।
0: तनिष्ठा?
1: हाँ।
0: तो आपने अपना तपन से टी डाल दिया ना वहाँ पर?
1: हाँ।
0: क्यों, अनिष्ठा कर सकते थे, पर तनिष्ठा का क्या नाम मतलब है?
1: बहुत ही क्या बोलते हैं, जो भी काम लेते हैं उसको खत्म करके दिखाते हैं।
0: वेरी वेरी गुड, सो नाइस नेम। सो शी डज दैट, जो भी काम अपने ऊपर लेती हैं फुल्ली कंप्लीट करती है, नाम के अनुसार हैं?
1: अब तक तो वही करके दिखा रही है।
0: वेरी नाइस। हाउ ओल्ड इज शी?
1: उसकी उम्र 15 साल है।
0: ऑसम। सो तपन साहब, आप लोग कहाँ जा रहे हैं अभी?
1: अभी तो हम फिलहाल घर की तरफ रवाना दिए हैं।
0: क्यों, वो कहाँ थे तो फिर वो पूछ लेती हूँ मैं।
1: थोड़ा बाहर गए थे हम लोग और बच्चों के कुछ सामान खरीदने थे, उन खरीदारी खत्म करके हम अभी घर की तरफ लौट रहे हैं।
0: मतलब आपका पूरा गाड़ी फिल्ड है, मतलब कि यू हैव योर वाइफ देयर, योर मोर किड्स? हाँ
1: हाँ, सभी है गाड़ी में, सभी सुन रहे हैं, आपको भी मुझे भी।
0: अच्छा कैसे सुन रहे हैं, आप तो स्पीकर फोन पे है नहीं?
1: सुनाई दे रहा है वो आवाज, थोड़ी फिर भी सुनाई दे देती है,
0: गूंज रही है गाड़ी के अंदर
1: रही है।
0: तो ड्राइव कौन कर रहा है? ड्राइव कौन कर रहा है?
1: मैं ही गाड़ी का चालक हूँ फिलहाल।
0: अच्छा, और फिर तीन सवारी भी है, चालक भी है, रेडियो भी है, मतलब कितना मल्टीटास्क करेंगे, एआई को दे दीजिए।
1: कोशिश तो वही है, जितना हम कर सके कर लेते हैं।
0: हाँ
1: भविष्य का तो पता नहीं।
0: चलिए कंग्रेचुलेशन, आपने तो नाम रोशन कर दिया जी अपने फैमिली का।
1: सही में
0: वेरी वेरी नाइस। तो मैं आपको दे रही हूँ कुछ, चलिए आई विल गिव यू दिस मिराज लाउंज की तरफ से। वहाँ पर क्या है ना, हुक्का है, डिलीशियस बाइट्स है, कॉकटेल्स है, लाइव म्यूजिक है, डीजे नाइट है। आप हैप्पी आवर भी
1: हाँ
0: जा सकते हैं मंडे थ्रू फ्राइडे, और लेडीज़ नाइट भी है, कॉलेज नाइट भी है। मैं डिटेल्स देती हूँ आपको, यू हैव अ चांस। आपने जीत लिया है $20 ऑफ देयर बिल, सो देयर यू गो। अपने
1: ओके
0: स्टार्स,
1: धन्यवाद।
0: हाँ अपने लिसनर्स को मैं ये गाना सुना देती हूँ और आपसे ले लेती हूँ आपके इन्फॉर्मेशन। डन,
1: ठीक है ठीक
0: देयर यू
1: है।
0: गो। तपन साहा साहब।

बस नाचते रहो, गाते रहो, मजेदार है जिंदगी, उसको निभाते रहो, वैसे हंसते भी रहो, हंसाते भी रहो। चलिए, झीरू राम है ना, उनके साथ एक कुछ थोड़ी सी अनहोनी हो गई, वो बतानी थी। तबीयत खराब थी, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा ओह नो, पता है वेरी सैड, आप सिर्फ 12 घंटे के मेहमान हो। या झीरू राम के साथ ऐसा हो गया, तो शायद सवेरा भी आप नहीं देख पाओगे, सोच अ बैड न्यूज़ झीरू राम के लिए। अब ये झीरू राम बहुत ही दुखी हो गए, अपनी पत्नी को बताया घर जाके कि यू नो ऐसा हो गया, सोचा कि आखिरी रात है, अच्छे से पत्नी के साथ प्यार से बातें करेंगे, प्यार से बिताएंगे। तो दोनों जन बहुत सारी बातें किए, सुख दुख जो भी जिंदगी की थी, दे वेंट बैक, रियलाइज़ कि क्या क्या जिंदगी में हुआ, बातों के साथ बिताए हुए लम्हे जो पुराने थे उनको भी याद किया। थोड़ी देर बाद झीरू राम ने देखा उसकी पत्नी जो है ना सो रही है, सोता हुआ देखकर उसने हिला के उसे उठाया, तुम सो रही हो? तो पत्नी ने कहा क्या करूं, तुम्हें तो सुबह उठना नहीं है, मुझे तो उठना है ना। ये हंसने की बात है कि नहीं, आई डोंट नो, झीरू राम अभी भी यहाँ हैं वैसे, बट 12 घंटे का ही उनके पास टाइम था वैसे, होता है कभी कभी।

0: भागो भागो कोई गधा अपने पल्ले बांध न जाए, भाग झिंकी भाग। वहाँ मुफ्त की रबड़ी खाए, देखो अपने रज्जू ताओ।
1: मक्कल घुमा के मक्खी उड़ाए, रतन और ताऊ दोनों बिकाओ।
0: छुटकी, भगवान करे वो सुखी रहे और उन दोनों का साया भी हमसे दूर रहे।
1: हर वक्त टोकती रहती है, तू मेरी बहनी भाई है,

जैसे हैं वैसे ही रहिए, आप जैसे भी हो वैसे ही रहिए, हम ऐसे हैं भैया। और कभी कभी क्या होता है, जो फैमिली है सबसे ज़्यादा केयर करती है, लेकिन कभी कभी अगर फैमिली इर्द गिर्द नहीं है और हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, तो केयरिंग के लिए कभी कभी कोई और आ जाता है। टेक्सास प्राइमरी केयर जैसे 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक प्राउडली केयर किया है उन्होंने हमारी कम्युनिटी का, और अब वो बड़े हो रहे हैं, ब्रांड भी बड़ा हो रहा है और नए नाम के साथ आ चुका है, सेकंड वन फ्रिस्को लोकेशन में। अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उनका ब्रांड, नया ब्रांड लुनॉक्सी मेडिकल, दैट इज़ LUNOXY, लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। लुनॉक्सी मेडिकल लेकर आ रहे हैं प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग। घर पर भी किसी की केयरिंग की ज़रूरत है, लैब टेस्टिंग घर पर ही बुलाकर हो सकता है, जो हमारे देश में होता है वही यहाँ भी हो सकता है। एक्सरे, CT स्कैन, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स एंड हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज, ऑल अंडर वन रूफ। इनका नाम टेक्सास प्राइमरी केयर से बदल कर हो चुका है लुनॉक्सी मेडिकल। ओपन 7 days a week फ्रॉम 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, नो अपॉइंटमेंट्स नीडेड। सो देयर दे आर विथ देयर अमेजिंग सर्विसेज। 104.9 FM फन एशिया रेडियो सुन रहे हैं। आपको जाते जाते आप वेदर की अपडेट दे दूं, ये अमेजिंग वक्त आ चुका है, फॉल का ऐलान हो चुका है, फॉल के लक्षण भी धीरे धीरे आ रहे हैं, पूरी तरह से अभी तक नहीं आए हैं, बट 72 लो है, 93 हाई है, सुपर, इतने सारे डेज ऑफ 3 digits रहा, लेकिन अब फाइनली वी आर इन अ ब्यूटीफुल टाइम। पार्टली क्लाउडी है आज, कल AM में क्लाउड्स है, PM में सन है। सैटरडे सैटरडे 74 हाई, 93 लो, सन सन, संडे को मोस्टली सनी रहेगा, पर 75 लो है, 95 हाई है। शुरुआत ऑफ द वीक मंडे पार्टली क्लाउडी, 76 लो, 95 हाई। टेरिफिक ट्यूसडे 77 लो, 94 हाई। मजार ऑफ द वीक वेडनेसडे को थंडर स्टॉर्म्स होने वाले हैं और वेदर ऊपर वाला थोड़ा खींच के 88 में आ जाएगा और लो इज 73। थम्स अप थर्सडे, स्कैटर्ड थंडर स्टॉर्म्स है विद 84 हाई एंड 72 लो। रेन के साथ, थंडर के साथ मैं आ जाऊंगी फिर से फ्राइडे को 5 से 8 अपना शो करने, लेकिन टेम्परेचर्स लेकर नहीं आ रही हूँ बहुत नीचे, बट इट विल बी 73-86। यू नो दीज आर गुड टेम्परेचर्स, 73 लो 86 हाई, रियली गुड। जब वो ठंड बढ़ जाती है ना, देन अगेन गेट्स अनकम्फर्टेबल, बट डैलस है, हम ऊपर नीचे देखते रहेंगे, मूडी है डैलस। AM में शावर्स हैं सैटरडे को और 73 लोज 86 हाई। देयर यू गो, अगले हफ्ते का तापमान अगले हफ्ते ही बताऊंगी, और आज के लिए आपको कहूंगी अलविदा, क्योंकि जा रही हूँ आज, आऊँगी 5 से 8 नेक्स्ट वीक।

यस हैप्पी हैप्पी हूँ, बिजी बिजी हूँ, एक हफ्ते के लिए फिर आ जाऊंगी आपके पास। जाते जाते ख्याल ये है, लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, इसलिए टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग, कहीं रुकना नहीं है, बस चलते जाना है। नथिंग इज कॉन्स्टेंट, एवरी थिंग इज मूविंग, सो यू नीड टू फॉर दैट बैलेंस। गुड नाइट, स्लीप टाइट, गेट अप हैप्पी, फ्रेश एंड ब्राइट। गुड नाइट, sleep tight, get up happy, fresh and bright, wishing you a flowerful morning, a colorful noon, a joyful evening and a peaceful night. I know it's going to be a fabulous day for you tomorrow. Started with a cup of positivity, phir dekhiye wo chai bas positivity hi attract karegi, aur milti hu agle hafte. You take care and be happy just like this.

खालू शिकवा तू नहीं, एक हार है यार थानेदार का फतवा तू नहीं, अता पता तू बता कोई सुरा बेसुरा।

0: गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin hai.
4: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे,
5: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
2: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
4: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
6: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
7: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
8: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
7: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
8: और एंटरटेनमेंट,
7: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में है।
8: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
7: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
9: ये तारा वो तारा हर तारा।
2: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
14: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
15: कितनी लंबी लिस्ट है?
14: बस 2 pages। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी।
15: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL वर्ल्डवाइड है ना। इंडिया में आपके डोरस्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
16: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्डवाइड, शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्डवाइड। विजिट SFLworldwide.com.
17: We need to talk.
18: अब क्या हुआ?
17: Nothing. It's not you.
18: Oh no.
17: It's the distance.
18: Distance? We live 10 minutes apart.
17: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
2: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
19: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
7: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
1: तुमसे मिलके दिल का है।
7: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।
1: आकर

0: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
1: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
0: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
1: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
2: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर jagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
3: Hello. मेरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन का स्टेटस क्या है
4: सर बढ़िया है 50,000 इंप्रेशंस 5,000 व्यूज और हंड्रेड्स ऑफ क्लिक्स
3: ओके लेकिन कस्टमर्स कितने आए
4: वो पता नहीं
0: एडवर्टाइजिंग का असली रिजल्ट क्लिक्स नहीं कस्टमर्स हैं इंट्रोड्यूसिंग स्मार्ट रीच एआई पावर्ड बाय रियल फुट ट्रैफिक एट्रीब्यूशन With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits.
3: Ab hui na smart marketing.
0: Visit smartreachai.us. Smart Reach AI. Turn attention into customers.
2: Smart Reach AI, a Panacea Network product.
5: That garba was totally worth it. We had so much fun.
6: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
5: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
7: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
8: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
9: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है
10: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन
11: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस
12: तुमसे मिलके दिल का है
10: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन
11: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी, स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया। फन एशिया,
3: don't miss out on the dance party of the year. Join the club Fun Asia Revolution and let the good times roll.

0: Dallas. Are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taza tareen khabron ke liye The Jago Times available hai ek click par thejagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
1: Wait a minute. Who are you?
2: Did someone say $100 credit for pizza? If you have an Amex Platinum card, you may be eligible for a $100 credit at Fun Pizza Kitchen. Treat yourself to cheesy favorites, special flavors, and mouth-watering toppings that'll have you coming back for another slice. Just visit the Fun Pizza Kitchen Frisco location before September 30th. For eligibility and details, call the Frisco location or simply walk in. Fun Pizza Kitchen. Bring your appetite. We'll bring the flavor. Sadia.
3: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
4: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
5: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
6: तुमसे मिलके दिल का है।
4: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
5: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
7: Hello guys, this is me Kinjal Dave and you are listening and watching Fun Asia Radio.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।
2: Don't miss out on the dance party of the year. Join the club, Fun Asia Revolution, and let the good times roll.

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: रेडी फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी एंड अ फ्रेश स्टार्ट इन योर करियर? वी आर लुकिंग फॉर एनर्जेटिक एंड मोटिवेटेड प्रोफेशनल्स टू जॉइन आवर टीम अक्रॉस मल्टीपल पोजीशंस। इफ यू आर बिटवीन 25 एंड 40 विद एक्सपीरियंस in media, sales, or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual, and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।
2: तुम क्या मैरिनेट हुए बैठे हो यार, पीवीएस मॉल में बबीता आ रही है।
3: कौन बबीता यार?
2: कौन बबीता? बबीता कुमारी जहाँ पना, आपकी बेगम बब, मेरी भाभी, वही बबीता जिसके हाथ पे मेहंदी से लिखा जाना था बबुआ सिंह।
3: मोहब्बत देख गुड्डू, तेरे भाई के दफन होने से पहले अपना आखिरी सलाम देने चली आई पूरी की।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: मार्शमेलो, नाम तो सुना होगा।
1: Playing the best tunes in all of Dallas. Fun Asia Radio, 104.9 FM.

0: अब तेरी बात।
1: मतलब
0: मेरा फैन बनना?
1: तेरा फैन बनने के लिए मुझे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही तेरा फैन हूँ।

beautiful.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
4: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
3: Fear not. We have the perfect solution.
2: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new Weekend Lunch Buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
5: Bindas bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
6: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ अनीशा रेडियो पर।
7: बिंदास बोलो।

श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पार से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा सामिया जहरा उनसे नाराज बैठी हैं। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से आपको।

0: हेलो, मेरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन का स्टेटस क्या है?
1: सर बढ़िया है, 50,000 इंप्रेशंस, 5,000 व्यूज और हंड्रेड्स ऑफ क्लिक्स।
0: ओके, लेकिन कस्टमर्स कितने आए?
1: पता नहीं।
2: एडवर्टाइजिंग का असली रिजल्ट क्लिक्स नहीं, कस्टमर्स हैं। Introducing Smart Reach AI, powered by real foot traffic attribution. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits.
0: Ab hui na smart marketing.
2: Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers.
3: Smart Reach AI, a Funasia Network product.
4: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट डैलस में रेडियो का डैड फोनीशिया 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

نہیں ہو یقین اتنی کیوں ہے بتا تو حسین.

0: ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर इंप्रेशंस कैंपेन का रिजल्ट
1: योर ऑनर हजारों लोगों ने ऐड देखा
0: मिस क्लिक्स
2: 100 लोगों ने क्लिक भी किया
0: कस्टमर्स कितने आए
3: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
2: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Phanasia Network product. Sadia.
4: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है
5: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन
6: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस
7: तुमसे मिलके दिल का है
5: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन
6: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क
8: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, a division of Brazos National Bank.
8: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
9: Call 857-891-8942 today.
10: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower or relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury or excitement, sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
11: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas. Cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
9: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
12: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
17: It's the time to crack out. It's the time to catch up.
18: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 p.m. ऑर्डर एनी 2 entrees एंड गेट 1 appetizer एब्सोल्युटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
14: अजी सुनते हो?
13: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
19: The OG of Tax Planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Fun Asia Radio.
20: Want to explore properties in India? You don't need to fly to India. The Gruh Pravesh India Property Expo is coming to Frisco. Meet top developers from Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR. Explore 200 plus projects for your dream home or next investment. October 10th and 11th, Hath Regency Frisco, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry, free parking. Gruh Pravesh India Property Expo by My Square Feet.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

101.9 FM. Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Non-stop infotainment.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनिश।

0: Lights, Mike, Bollywood, Fanasia, Fanasia.
1: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया 104.9 FM.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
7: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म. सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर.
9: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह. कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259.
10: हेलो, मेरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन का स्टेटस क्या है?
11: सर बढ़िया है, 50,000 इंप्रेशंस, 5,000 व्यूज और हंड्रेड्स ऑफ क्लिक्स.
10: ओके, लेकिन कस्टमर्स कितने आए?
11: वो पता नहीं.
12: एडवर्टाइजिंग का असली रिजल्ट क्लिक्स नहीं, कस्टमर्स हैं. इंट्रोड्यूसिंग स्मार्ट रीच AI, पावर्ड बाय रियल फुट ट्रैफिक एट्रीब्यूशन. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits.
10: Ab hui na smart marketing.
12: Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers.
13: Smart Reach AI, a Fun Asia Network product.
14: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
13: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
14: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
13: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
14: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
13: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
14: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
15: Did someone say $100 credit for pizza? If you have an Amex Platinum card, you may be eligible for a $100 credit at Fun Pizza Kitchen. Treat yourself to cheesy favorites, special flavors, and mouth-watering toppings that'll have you coming back for another slice. Just visit the Fun Pizza Kitchen Frisco location before September 30th. For eligibility and details, call the Frisco location or simply walk in. Fun Pizza Kitchen. Bring your appetite. We'll bring the flavor. Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
16: Sadia!
15: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
16: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
15: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
17: तुमसे मिलके दिल का है।
16: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
15: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

सुप्रभात दोस्तों, सुस्वागत हम आपके कार्यक्रम म्यूजिक मंत्र में, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता। आपका मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक। हमारे साथ रहेंगे मीठे तराने और खूबसूरत संगीत। उम्मीद करती हूं कि आपका ये वीकेंड सुखद जा रहा है, बढ़िया जा रहा है, और आप जुड़े हैं अब मेरे साथ ऑन दिस म्यूजिकल जर्नी। ले चलूंगी मैं आपको बेहतरीन गीतों की ओर, और कुछ करेंगे हम वार्तालाप, ले आएंगे कोई टॉपिक और उस पर करेंगे छोटी सी डिस्कशन, एंड वी विल हैव अ रियली गुड टाइम ऑल द वे अंटिल 10 AM। आई डेफिनेटली होप दैट यू हैव प्लान्ड टू जॉइन मी ऑल द वे एज वेल। शुरुआत करते हैं एक रोमांटिक गीत के साथ।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: उस प्यारे गीत के बाद एक और प्यारा सा रोमांटिक गीत। एंड यू नो व्हाट, इफ यू हैव अ सॉन्ग इन माइंड, अ रोमांटिक सॉन्ग इन माइंड, लेट मी नो, आई विल ट्राई एंड ब्रिंग इट टू यू अंटिल 8:30 टुडे। 972-235-5555 इज द नंबर।

0: हाँ, ये मेरा पहला पहला प्यार है, ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द फिल्म K3G. और आपका पहला पहला मौका है टू फाइंड अ ब्रांड न्यू हाउस, और आप खोज रहे हैं कोई सहायता, तो आपको कहती हूँ मैं कि मदद करने के लिए है यहाँ पर आपके लिए ड्रीम होम मॉर्गेज. इन्होंने बहुत सारे परिवारों के लिए हेल्प किया है नेशन वाइड विद पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस फॉर बाइंग द फर्स्ट होम और द सेकंड और एनी अदर रियली नंबर ऑफ होम्स, एंड आल्सो फॉर रीफाइनेंसिंग द होम्स, एंड दे आर इन हैव बीन अराउंड सिंस 1998. सो गिव देम अ कॉल, इट्स द एक्सपर्टीज दैट विल हेल्प यू get your dream home to be closer than you think. The number to call Dream Home Mortgage is 972-245-5626, and you could also visit their website, which is dreamhomemortgage.com. Dream Home Mortgage, making dream homes happen, and you want that to happen, right?
1: Dallas ki dhadkan 104.9 FM Phoenicia Radio.
0: इस अगले गाने की आइए दरख्वास्त पूरी की जाए, फलक तक चल साथ मेरे. एनी रोमांटिक सॉन्ग्स यू वांट टू लिसन टू 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. विल टेक योर रिक्वेस्ट टिल 8:30 दिस मॉर्निंग.

0: फिल्म का नाम रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, और ये किरदार निभाए रणवीर सिंह और आलिया भट्ट ने. रणवीर सिंह आफ्टर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक आफ्टर बीइंग बिकमिंग अ डैड टू अनदर यानी कि सेकंड बेबी गर्ल, ही इज बैक इन एक्शन और दिखाई दिए थे ऑन द फिल्म सेट्स फॉर हंकार स्क्रीनिंग आफ्टर द सेकंड बेबीज बर्थ. और आलिया भट्ट के क्या कहने, वेल छा गई हैं इंडस्ट्री में और वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हर फिल्म कॉल्ड लव एंड वॉर अलोंग साइड हर हस्बैंड रणबीर कपूर. एंड दिस इज गोइंग टू रिलीज इन द अर्ली पार्ट ऑफ 2027 एंड शी हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लुक एज वेल. इन्होंने एक you know, there's a video that's floating with a cabaret dancer look for Alia Bhatt. Lots of discussions going on online. I look forward to watching the movie now, which is to release in January of 2027. Stay tuned for more.
1: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज, डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को. श्री कृष्णा ज्वेलर्स, क्राफ्टेड फॉर मोमेंट्स दैट मैटर. विजिट श्रीकृष्णा.com.
4: That garba was totally worth it. We had so much fun.
5: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
4: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
6: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
11: पांच से आठ स्ट्रेट फ्रॉम बिहार, कल हिंदी हिंदी बोल.
12: यू नो माई वॉइस ऑन द रेडियो, नाउ लेट मी बी अ वॉइस यू कैन ट्रस्ट इन रियल एस्टेट. मैं हूँ नवनीता खेमका, रियल्टर विद केलर विलियम्स रियल्टी. बाइंग, मूविंग और सेलिंग अ होम, आई ब्रिंग मार्केट नॉलेज, क्रिएटिव मार्केटिंग एंड पर्सनल कमिटमेंट टू योर जर्नी. बिकॉज टू मी रियल एस्टेट इजंट जस्ट अबाउट प्रॉपर्टीज, इट्स अबाउट यू मेरे दोस्तों, योर पॉसिबिलिटीज एंड योर न्यू बिगिनिंग्स. Every home has a story. Let's create yours together.
3: Call Namrita Khemka at 347-449-4242.
11: Phone uthaiye, number dabaiye.
12: 347-449-4242.
13: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं. एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है.
14: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन.
15: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल. 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट. सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking. Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
16: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चकचाव कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स और ओल्डर टू गेम।
0: सभी श्रोताओं का फिर एक बार स्वागत है म्यूजिक मंत्र में, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता। आपका मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक। हमारे साथ हैं बहुत ही फैंटास्टिक गीत इन दिस सेगमेंट एंड दे टॉकिंग अबाउट बीइंग फ्री स्पिरिटेड, मजेदार, एंजॉयिंग लाइफ लाइक देयर इज नथिंग टू केयर। लेट्स एंजॉय कपल ऑफ दीज सॉन्ग्स एंड विल डाइव इनटू अ डिस्कशन, a short one, a fun one. Stay tuned.

जब हम ये ले आते हैं ना आई डोंट केयर वाला फ्री स्पिरिट, तो पता है यू हैव टू लिव अप विद दैट, राइट? सो यू ऑलवेज हैविंग फन, यू आर ऑलवेज आउट एंड अबाउट. एंड कभी कभी ऐसा होता है कि वेल व्हेन यू हैविंग फन एंड यू आर आउट एंड अबाउट विथ योर केयर फ्री स्टाइल, कभी कभी हम थोड़े से बीमार भी हो जाते हैं और फिर फिक्र हो जाती है अबाउट इंश्योरेंस. तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, इफ यू डोंट हैव इंश्योरेंस और इफ पैशन हेल्थ, यस पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज आउट ऑफ नेटवर्क, व्हाट डू यू डू? Well, you can get affordable primary care with Passion Health Direct for just $85 a month. Or isme kya kya included hai? Primary care is included, preventive care is included, medication management, telehealth, and other things. So now you're wondering what do you do so that you could take advantage of this program? I'm going to tell you. You can call or text them at 214-666-6259 or visit passionhealthphysicians.com. Friends, this program is not health insurance. Eligibility restrictions do apply. And want to also tell you that the Frisco location is now open on the weekends, yani ki Saturdays and on Sundays. Back to Carefree Mood and the free spirit, and we will come back and talk about that in just a minute.

0: सो फ्रेंड्स, आज का ये जो टॉपिक है ना, इट हैज टू डू विथ थिंग्स वी क्लेम नॉट टू केयर अबाउट, या हिंदी में कह सकते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भीतर ही भीतर, दिल ही दिल में, मन ही मन में फर्क तो पड़ता है. जैसे कि हमने किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजा, राइट, और फिर उन्होंने जवाब नहीं दिया. पहले तो लगा कि हम टेक्स्ट मैसेज भेज देते हैं, अपना काम कर लेते हैं, डन. But we keep checking to see if they checked and if they responded as well. अब ये सोशल मीडिया पे तो काफी चीजें होती हैं कि अब हमने एक पोस्ट बनाया, पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी डाली और पोस्ट हमने सही वक्त पे डाला एंड ऑल ऑफ दैट, पर कोई जवाब नहीं आया. अच्छा, कोई और भी कैटेगरीज हैं? हाँ जी, बहुत सारी कैटेगरीज हैं. और मैं आपसे पूछती हूँ, अगर मैं कहूँ कि वी क्लेम दैट और वी प्रिटेंड दैट वी डोंट केयर बट वी एक्चुअली एंड ऑब्वियसली डू, ऐसे आपके जहन में कोई एग्जांपल्स हैं तो आप बताएंगे. वी विल कम बैक एंड टॉक अबाउट अ फ्यू मोर ऑफ दोज. 9722355555 पे करते हैं आपको इंतज़ार. Call and tell us, what are those things that you think you don't care about, but truly in your heart, you do? Looking forward to hearing from you.
1: मेरे शेर, मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा? तूने इतना बड़ा झोल कर दिया? बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है. मैं कहता हूँ जब तक बुढ़ापा नहीं आता, थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते.

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
1: तो हम बातें कर रहे हैं कि यू नो वी प्रिटेंड टू केयर, प्रिटेंड नॉट टू केयर, बट वी रियली ट्रूली डू। जैसे कि हम कहते हैं आई रियली डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक, पर फिर जाकर की क्लॉजेट में जाकर की फिर खोजते हैं कुछ और ड्रेसेस, एंड देन वी चेंज द आउटफिट नॉट वंस नॉट ट्वाइस मल्टीपल टाइम्स अंटिल वी फील दैट इज द वन। एंड देन द अदर वन इज व्हेन यू मेक अ पोस्ट और यू सेंड अ टेक्स्ट मैसेज, और बस उसको छोड़ने के बदले दोबारा दोबारा दोबारा बहुत बार चेक करते हैं फोन को कि उनका मैसेज वापस आया कि नहीं। एंड देन अनदर वन इज आई डोंट केयर वेयर वी ईट, कोई आपसे पूछता है कहाँ जाना है तो इसे आई डोंट केयर वेयर वी ईट, बट देन वी रिजेक्ट मोर देन 4 रेस्टोरेंट्स। वेल ऑन दैट नोट व्हेन यू गो टू तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट यू विल नो यू मेड द राइट चॉइस, बिकॉज इफ बटर चिकन बिरयानी पनीर टिक्का और दाल मखनी साउंड लाइक योर काइंड ऑफ डिनर, you are going to head to Tandoori Flame in Garland and you're going to absolutely love it. Now, another reason to go to Tandoori Flame is they have the Flame Hour. What's that? Well, Monday through Thursday from 5 to 8 p.m., order any 2 entrees and receive 1 complimentary appetizer. Hey, doesn't get better than that. So visit tandooriflametx.com, get all the information there, and then make your way to enjoy some great food at Tandoori Flame Restaurant.
2: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.
1: So, the phone lines are open. Looking forward to hearing from you to tell me about what are some things we pretend not to care about, but truly do. All right, what are we doing next? Here's the song. कोई गाने भी आपके ज़हन में हैं that fit the theme? Let me know.

0: We'll talk about this topic after a short break. Stay tuned.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
5: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
4: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
5: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
6: Tara wo tara har tara.
7: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
8: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
9: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, बट तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
8: कैसे?
9: पेज 3 ईटरी?
8: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
9: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्ट एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
8: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
10: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
11: ये लास्ट दिवाली पहना था, ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है।
12: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
13: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके।
11: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
13: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। तथास्तु।
14: Discover stunning lehengas, elegant saris, bridal jewelry and festive styles for men and kids, all at Indian Attire on 2995 Preston Road, Frisco. Indian Attire Frisco, your divine destination for festive fashion.
15: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
16: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
17: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
18: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
17: Kya matlab?
18: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
17: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
18: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
17: Ab to karna hi padega, madam.
19: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
20: Sadia.
21: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
22: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
23: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
24: तुमसे मिलके दिल का है।
22: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
23: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

एंड वेलकम बैक टू म्यूजिक मंत्र दोस्तों, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता, आपका मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक। हम आज ले आए हैं आपके लिए प्रस्तुति। प्रस्तुति का नाम है क्या फर्क पड़ता है, और आई डोंट केयर एक्सेप्ट आई ऑब्वियसली डेफिनेटली डू। एंड यू नो व्हाट, विद दैट काफ़ी सारी ऐसी जगहें हैं या सिचुएशंस हैं जहां पर हमें लगता है वी डोंट केयर एंड वी प्रिटेंड ऑल्सो दैट वे। फॉर एग्जाम्पल, आप डिनर पे बैठे हैं और आप सोच रहे हैं आई विल जस्ट ग्रैब एनी चेयर एंड सिट, बट ट्रूली ट्रूली यू आर थिंकिंग वेल आई वॉन्ट टू नो हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड देन आई विल pick the seat. I don't care what people think. Now, this is a big one, big one. A lot of us say, I don't care what everybody else thinks. But mani man mein definitely vichar to aate hain, ye kya sochte honge mere baare mein? Aur kaafi aise situations hain jahan par we feel like it's not necessary for me to care, but I do. If there's one on your mind, let me know. How about, how do you feel when you go out all dressed up? Do you care about that? Do you care what comes next? Let me know. Share with me. 972-235-5555 is the number.

All right. काफी ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पर हम कहते हैं दैट आई डोंट रियली केयर दैट आई वांट इट. वेल एक्चुअली तो कभी ये भी कहते हैं थिंग्स दैट वी से वी डोंट वांट. जैसे कि कहते हैं कि हमें कोई भी बर्थडे सेलिब्रेशन या बर्थडे पार्टी नहीं चाहिए. पर जब सभी लोग भूल जाते हैं आपका बर्थडे तो आपको कैसे लगता है? इट हर्ट्स, राइट? फिर कहते हैं हम मुझे तोहफा नहीं चाहिए. बट जब तोहफा ले आते हैं छोटा सा एज अ टोकन तो कहते हैं रियली इज दैट इट? अनदर वन, हम कहते हैं वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इन आवर सेल्व्स एंड वी डोंट रियली नीड दोज कॉम्प्लीमेंट्स. पर अगर कोई आकर के कहे यू लुक नाइस टुडे, आप कहते हैं थैंक यू. पर व्हाट डू यू मीन बाय टुडे? डोंट आई ऑलवेज लुक नाइस? सो इस तरह के बहुत सारी वाक्या हैं, बहुत सारी सिचुएशन हैं वे वी से वी डोंट वॉन्ट बिकॉज वी डोंट केयर फॉर देम इनफ. बट मन ही मन में, भीतर ही भीतर दिल में लव, वो नीड है तो सही, वी डू केयर. वॉट आर सम ऑफ दोज फॉर यू? लेट मी नो एट 972-235-5555. नाउ इट डज नॉट हैव टू बी फॉर यू ओनली, और समथिंग इफ यू हैव नोटिस इन अदर पीपल यू कैन शेयर दैट एज वेल. 972-235-5555. क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है यार.

उन्होंने मुझे याद नहीं किया, यानी कि दे डिड नॉट थिंक ऑफ मी, दे डिड नॉट इनवाइट मी, आई फेल्ट एक्सक्लूडेड, बट आई से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मन ही मन में बहुत फर्क पड़ता है. विल कम एंड टॉक अबाउट दैट अ लिटिल बिट आफ्टर दिस सॉन्ग.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masoori Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swaad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites jo aapko yahan pasand hai. अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स HEB हियर एवरीथिंग इज बेटर
3: अजी सुनते हो सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे
4: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे
3: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा
4: हेलो तुम डैलस में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो
3: सच में सब संभालेंगे
4: अरे सब कुछ वेडिंग हो हाउस वार्मिंग ग्रेजुएशन यू नेम इट दे डिलीवर वेन्यू फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770 Vanessa Events, your celebration partner.
5: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? Ya aap H1B pe hain and looking options with 5% or 10% or even 3% down. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
6: हुजूर आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी
7: बेगम मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह
6: आखिर क्या है इस बिरयानी में
7: दम में नरमी मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद
8: प्रेजेंटिंग बिरिस्ता हाउस बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर्स एंड अ ट्रूली नवाबी एक्सपीरियंस नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स डिलीशियस डेजर्ट्स एंड मेनी मोर टू एक्सप्लोर डेंटन्स फेमस बिरिस्ता हाउस इज नाउ इन फ्रिस्को 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
1: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
8: Barista House, richness of biryani bliss.
9: इस साल तो कमाल हो गया हमारा रेवेन्यू डबल हो गया
10: सर अच्छा है लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया
9: नहीं
10: बुक कीपिंग अपडेटेड है
9: नहीं
10: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया
9: वो भी नहीं
10: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त
1: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो For your tax planning, bookkeeping and CFO services, visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
11: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
12: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंकवेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
13: Marvin Das and Bindas Services present the 6th annual South Asian Food Festival on October 31st at the Sound Venue in Coppell. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.
14: Welcome back to Music Mantra. This is the final segment for this morning's Music Mantra, जिसमें रही हूँ मैं आपके संग संगीता. आपका मेरा साथ रहता है हर सैटरडे सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक ले आती हूँ हर बार एक अनोखी प्रस्तुति. Right now, though, I want to remind you all that Sonu Nigam is already in town for his concert tonight. And this is going to happen at the Credit Union of Texas Event Center in Allen. Favorite गाने होंगे आप सभी के in his voice and all of that live in front of you guys. Now, if you've not got your tickets yet, you can get those at Ticketmaster. And if you have any questions, need more information, call 855-360-SHOWS. Revolution is the name of the concert tonight by Sonu Nigam Live, exclusive media partner, Fun Asia Network. Having said that, aapse poochti hoon, koi gaane aap sunna cha rahe hain, khas taur pe, in the voice of Sonu Nigam, you're going to call me and let me know which ones those are. Number 972-235-5555.

0: the Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.
1: और दोस्तों मौका अब आया है कुछ देने का. मतलब मेरी तरफ से, मतलब फन पिज़्ज़ा किचन एक्चुअली की तरफ से आपको कुछ पाने का एक मौका मिल रहा है. सो आई वांट टू टेल यू फर्स्ट अ लिटिल बिट अबाउट फन पिज़्ज़ा किचन्स न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड पिज़्ज़ास. दे आर ए फुल ऑन फ्लेवर फिएस्टा. तो क्या क्या ट्राई करेंगे? वेल, मे बी यू कुड ट्राई इट ऑल, व्हाई नॉट ट्राई द फियरी पोयो लोको or the seafood packed Senor Camarón, or try the Fiesta veggie and enjoy those Mexican inspired flavors. आपने एक सवाल का जवाब देना है मुझे और मैं आपका नाम डालूंगी on a list from which we will pick a winner to win a $10 gift card. And the gift card will be valid at Fun Pizza Kitchen. Now, for more information about Fun Pizza Kitchen, you should go to funpizzakitchen.com. अगले गाने को सुनिए और मुझे बताएं ये गाना किस पर फिल्माया गया है. Who is the main, actor in this one? You're going to tell me at 972-235-5555. And then I'm going to enter your name for a drawing for a $10 gift card that you can go and enjoy at Fun Pizza Kitchen. और वहां पर आप enjoy करेंगे खूब सारी आइटम्स ऑन द मेन्यू एंड यू विल बी ऑल्सो एक्साइटेड टू ट्राई द न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड पिज़्ज़ास. ओके, स्टूडियो नंबर 972-235-5555. यू गोना कॉल मी एंड टेल मी ये गाना किस पर फिल्माया गया है. संग बाय सोनू निगम.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
3: Call 857-891-8942 today.
4: Genie, hukum meri akal. Hum aaj party ke mood mein hain. Ek aisi jagah batao jahan meri entry hi royal ho.
5: Miraj Lounge chaliye meri akal. Luxury limousine rides aapke intezar mein hain.
6: Mujhe zyada crowd pasand nahi.
5: No problem akal. Luxury private space bhi hazir hai aapki private party ke liye.
6: Aur entertainment?
5: Movie night, belly dancing nights, premium hookahs aur amazing vibes sab aapki khidmat mein hain.
6: Wah Genie, ye jagah hai ya koi jadoo?
5: Jadoo nahi, Miraj Lounge at McKinney Ranch Parkway. Miracles happen in Mirage.
7: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libas khushiyon ko dugna kar deta hai.
8: Har khushi mein aapke saath Manyavar Mohe, traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard of 635 East in Irving.
9: We need to talk.
10: Ab kya hua?
9: Nothing, it's not you.
10: Oh no.
9: It's the distance.
10: Distance? We live 10 minutes apart.
9: Are it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
8: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
11: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
12: रेस्टोरेंट चूज करना हो गूगल रिव्यूज, होटल बुक करना हो गूगल रिव्यूज, लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू.
8: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 थ्रू 2026. मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्थी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर. कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे.
13: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
14: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
8: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
15: तुमसे मिलके दिल का है.
14: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
8: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
16: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.
17: Dallas ki dhadkan 104.9 FM Fun Asia Radio.

सबके हाथों में कुछ लकीरें हैं, बनती जिनसे सबकी तकदीरें हैं। दुआ है आपके हाथों में वो लकीरें कुछ खास हों और दुनिया की सारी खुशियां आपके पास हों। वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद फाइनेंशियल रेडियो 104.9 एफएम पर। मैं मधुलिका आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत। वेल, जस्ट चिल में हम करेंगे, एज द नेम सजेस्ट, जस्ट चिल। मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक। स्टूडियो का नंबर रखें याद, 9722355555। अ बिग शाउट आउट टू संगीता फॉर अ वंडरफुल शो दैट शी ब्रॉट टू अस टुडे मॉर्निंग टिल 10 AM। कमिंग बैक टू जस्ट चिल, सैटरडे होता है हमारा ट्रैवल सेगमेंट, जिसमें ले चलती हूँ आपको दुनिया की एक ऐसी खूबसूरत डेस्टिनेशन पर जहाँ या तो आप जा चुके हैं या जाने का मन रखते हैं, यानी कि वो आपकी बकेट लिस्ट में होती है, और ना हो तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि वो डेस्टिनेशन आपकी बकेट लिस्ट में आ जाए। सो वेल, आज हम बातें करने वाले हैं पेरिस की, राइट? सो या तो आप पेरिस जा चुके हैं या जाने का मन रखते हैं, कुछ मज़ेदार बातें हैं जो हमारे साथ करना चाहें शेयर, देन द स्टूडियो नंबर वंस अगेन इज 9722355555। दिस इज मधुलिका, आई विल बी देयर विद यू टिल नून।

0: वेल दैट्स इवनिंग इन पेरिस. हम तो मॉर्निंग इन पेरिस की बात कर रहे हैं बिकॉज आज हम जस्ट चिल में बातें करेंगे पेरिस की. तो पेरिस में बोंजू इज लाइक अ रूल ऑफ लाइफ. पता है, शॉप हो, कैफे हो, बेकरी हो, कहीं भी आ रहे हो, जा रहे हो, कॉन्वर्सेशन डायरेक्टली लाइक आई वॉन्ट अ कॉफ़ी, तो भैया आपकी कॉफ़ी जो है महंगी भी हो सकती है. जी हाँ, देर आर लॉट्स ऑफ कैफेज इन पेरिस जहाँ पर इफ आप अपने सही एटिकेट्स नहीं दिखाएंगे देन आपकी जो कॉफ़ी, चाय, जो भी आप ले रहे हैं वो महंगी भी हो सकती है. सो सर्टेन थिंग्स, अगर आपको कुछ विशेज, यू नो, जनरल ग्रीटिंग्स फ्रेंच के पता हो तो दे रियली डू अप्रिशिएट कि टूरिस्ट ने थोड़ा एफर्ट लगाया हमारी भाषा सीखने का. तो डेफिनेटली यू शुड नो बोंजू या फिर मर्सी, मर्सी बोकू, लाइक थैंक यू वेरी मच. अगर थोड़े बहुत वर्ड्स आपको आते हैं तो पेरिस की ये जो विज़िट है आपकी बहुत खूबसूरत हो जाएगी. लेकिन हाँ, अगर आपने थोड़े अकड़ के ज़्यादा बात की ना तो आपकी कॉफ़ी महंगी भी हो सकती है. तो एटिकेट्स, एटिकेट्स, एटिकेट्स.
1: ओहो, अरे कोई सास तो छेड़ो. झुका के सर को पूछो, मैडम हाउ डू यू डू.
2: नहीं नहीं नहीं भाभी, ऐसे नहीं, एक्टिंग करके बताओ.

0: होता क्या?
1: अब तुम करके दिखा, कैसे बोलोगे?
2: How do you do?
1: Ha! How do you do?
2: I love you.
1: Oh, I love you इतनी जल्दी नहीं रे बाबा.

0: I like you.
1: अब तुम्हारे भेजे में बात आई, अब आगे बढ़े।
2: ठहरो। अरे तू भी चुप हो जा। खामुखा बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो?
1: अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी।
3: ऐसा क्या?
1: हाँ।

The movie Jhoom Barabar Jhoom, that was Ticket to Hollywood. And yes, we are talking about पेरिस. तो पेरिस में जो सेन रिवर है, वहाँ पहले तो स्विमिंग वॉज इम्पॉसिबल, लेकिन अब पॉसिबल है. लेकिन ऐसा नहीं कि जहाँ मन आया बस वहीं कूद गए, ऐसा नहीं है. जी हाँ, पेरिस हैज़ ओपन अप सुपरवाइज्ड सेन स्विमिंग एरियाज 2026 समर से. एंड स्विमिंग जो है आउटसाइड ऑथोराइज जोन्स इज प्रोहिबिटेड. सो जंपिंग ऑफ ब्रिजेस एंड कीज इज ऑल्सो फॉरबिडन. तो आप ज़रा सोच समझ कर अगर आपको वहाँ स्विमिंग करनी है तो ही कूदिएगा.

Well, that was a Besharam Rang taken from the movie Pathaan. And before I play the next song, I would like to tell you all about some jewelry. क्योंकि अब इतनी फेस्टिविटीज जो शुरू हो गई हैं, तो सोचा आपको कहाँ से आप ज्वेलरी ले सकते हैं, थोड़ा आइडिया दे ही दिया जाए. क्या कहते हैं? सो डिस्कवर श्री कृष्णा ज्वेलर्स. जी हाँ, एक्सप्लोर अ स्टनिंग हैंडक्राफ्टेड कलेक्शन ऑफ गोल्ड, डायमंड्स, पोलकी एंड सो मच मोर, विद डिजाइंस फॉर एवरी ओकेजन एंड एवरी स्टाइल. क्योंकि होता है ना कि यार ये मेरी स्टाइल नहीं है, वो मेरी स्टाइल नहीं है. सो यू विल गेट लॉट्स ऑफ चॉइसेस. विजिट 13145 मेन स्ट्रीट, स्वीट 220, फ्रिस्को. Or you can call Shri Krishna Jewelers. The number is 4302311111. And the next song, Jugni Ji.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
4: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
3: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
4: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
3: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
4: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
3: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
5: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स।
6: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
7: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
6: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
2: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet, from flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday 12 pm to 3 pm. This weekend let the Flavor Lounge do the cooking.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
0: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इट्स टाइम टू टर्न अप द फ्लेम। Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, sizzling flavors और चटपटे appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m. Order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
11: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
12: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया 104.9 FM।

तमार लू फ्रॉम द मूवी लुटेरा। और मैं तो कहती हूँ कि आपको अपनी हेल्थ भी हमेशा संवारते रहना चाहिए, एंड कभी भी यू शुड नॉट थिंक कि अरे यार यू नो इंश्योरेंस नहीं है, ये हमारे नेटवर्क में नहीं है तो हम नहीं जाएंगे, हम अपनी हेल्थ का चेकअप नहीं कराएंगे। दैट्स नॉट द राइट डिसीजन। सो इफ यू हैव नो इंश्योरेंस और या पैशन हेल्थ इज आउट ऑफ नेटवर्क, वेल कोई बात नहीं, फिकर नॉट। गेट अफोर्डेबल प्राइमरी केयर विद पैशन हेल्थ डायरेक्ट फॉर जस्ट $85 अ मंथ, इंक्लूडिंग primary care, preventive care, medication management, telehealth and so much more just for $85 a month. आप Passion Health Primary Care को call या text कर सकते हैं. The number is 214-666-6259 or you can visit passionhealthphysicians.com. This program is not health insurance, so eligibility restrictions do apply.

Well, that was the title track, Befikre. And yes, अगर हम पेरिस की बात कर रहे हैं और आप जब नोत्र दाम कैथेड्रल देखने जाएंगे ना, और अगर आप ट्रेन स्टेशन से निकलेंगे तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी जो नाक है ना वो जलेबी और समोसे की सुगंध में ही उस शॉप तक पहुंच जाएगी जहां आपको एक्चुअली बाहर शॉप के हलवाई बैठ के जलेबी बनाता हुआ या समोसे तलता हुआ दिखेगा. एंड दैट्स लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड की. सोचिए नोत्र दाम आपको दिख रहा है पीछे और आप बैठ के समोसे और जलेबी इंजॉय करें, मतलब क्या बात है. नहीं,

Well, that was Afghan jalebi taken from the movie Phantom. And yes, this is Madhulika. Just chill में आज हम बात कर रहे हैं पेरिस की. तो पेरिस जाएं और आईफिल टावर तो मतलब जाएंगे ही जाएंगे, मतलब दैट्स लाइक अ गिवन. तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जब जाएं तो ऐसे टाइम पर जाएं, मतलब शाम को जाएं, सो दैट आपकी आपको दिन के लाइट में भी आईफिल टावर दिखे. और फिर ना शाम को जब अंधेरा होने लगता है तो आईफिल टावर पर लाइट्स जलती हैं, एंड वो एक बड़ी तरीके से जलती हैं, एंड इट्स अ वेरी मैजिकल साइट टू बिहोल्ड. यू नो इट्स इट लिटरली कैन गिव यू गूज बम्प्स. तो माई रिकमेंडेशन वुड बी कि जब आप पेरिस जाएं और आईफिल टावर जिस दिन भी आपका घूमने का मन है, देखने का मन है, तो ट्राई गोइंग एट अ टाइम जब शाम है, तो आप दिन की रोशनी में भी आईफिल टावर देख लें और जो वो रात की जो लाइट्स जलती हैं

बम्स। तो माय रिकमेंडेशन वुड बी कि जब आप पेरिस जाएं और आईफिल टावर जिस दिन भी आपका घूमने का मन है, देखने का मन है, तो ट्राई गोइंग एट अ टाइम जब शाम है, तो आप दिन की रोशनी में भी आईफिल टावर देख लें, और जो वो रात की जो लाइट्स जलती हैं वो बहुत ही प्यारी लगती हैं। ऐसा लगता है कि आईफिल टावर पर इतने सारे जो हैं वो तारे जो हैं वो जगमगा रहे हैं।

सुन रहे हैं आप 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूं मधुलिका, लेकर आई हूं जस्ट चिल, जहां करते हैं हम, as the name suggests, just chill. Saturday होता है हमारा travel segment, और आज मैं ले चली हूं आपको पेरिस की सैर पर. जी हाँ, दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक. अगर आप पेरिस जा चुके हैं, कुछ सुनहरी यादें हैं जो करना चाहें शेयर, देन डेफिनेटली गिव मी अ कॉल. द नंबर टू द स्टूडियो इज 972-235-5555.

दैट वॉज अ बेबी डॉल में सोने दी, एंड सोते सोते क्या, जागते जागते भी हर कोई ये सपना देखता है कि यार उसका एक प्यारा सा घर हो, राइट, ड्रीम होम हो. सो वेल, अगर आपका ड्रीम होम है और आप सोच रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, सो यू नो वट, योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक, बिकॉज 1998 से ड्रीम होम मोर्गेज ने बहुत सी फैमिलीज़ को नेशन वाइड हेल्प किया है विद पर्सनलाइज मोर्गेज सोल्यूशंस, चाहे फिर वो बाइंग के लिए हो या रीफाइनेंसिंग के लिए हो. सो ड्रीम होम मोर्गेज को रखें याद, द नंबर इज 972-245-5626, और यू कैन विजिट dreamhomemortgage.com, बिकॉज ड्रीम होम मोर्गेज इज मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन. सो रिमेंबर दैट, ड्रीम होम मोर्गेज.

Well, that was a title track of Jhoom Barabar Jhoom, and मैं तो कहती हूँ कि खूब घूम. जी हाँ, बिकॉज घूमना इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ. एंड जब आप पेरिस जाएँ तो एक और रिकमेंडेशन मेरी ये है दैट एब्सोल्युटली कहीं भी जाएँ, वेन एवर यू शुड ट्रैवल लाइट. लेकिन आपको मैं बताऊँ कि जनरली इन ऑल स्टेशन्स यू नो पेरिस में यू हैव दोज लॉकर्स जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं. एंड बी वेरी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ पिक पॉकेट्स, बिकॉज खूब पिक पॉकेट्स होती हैं. इनफैक्ट हम जब गए थे, मेरे इन लॉज हमारे साथ गए थे घूमने, एंड हमारी आंखों के सामने हमारे मेरे फादर इन लॉ की पिक पॉकेट हुई, एंड हम देखते रह गए, हमें समझ ही नहीं आया. यू नो, सो इट्स वेरी वेरी यूज वेरी कॉमन कि पिक पॉकेट्स होती हैं. सो बी यू शुड हैव यू शुड बी वेरी केयरफुल कि किसकी नज़र कहाँ है और क्यों है.

0: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
1: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
0: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
1: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
0: सच में सब संभाल लेंगे?
1: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। Vanessa Events, your celebration partner.
3: ये तारा वो तारा हर तारा।
2: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
4: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
5: Wait a minute. Who are you?
6: Did someone say $100 credit for pizza? If you have an Amex Platinum card, you may be eligible for a $100 credit at Fun Pizza Kitchen. Treat yourself to cheesy favorites, special flavors, and mouth-watering toppings that'll have you coming back for another slice. Just visit the Fun Pizza Kitchen Frisco location before September 30th. For eligibility and details, call the Frisco location or simply walk in. Fun Pizza Kitchen. Bring your appetite. We'll bring the flavor.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: Ab to karna hi padega, madam.
9: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: Hello. मेरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन का स्टेटस क्या है?
11: सर बढ़िया है, 50,000 इंप्रेशंस, 5,000 व्यूज और हंड्रेड्स ऑफ क्लिक्स।
10: ओके, लेकिन कस्टमर्स कितने आए?
11: वो पता नहीं।
6: एडवर्टाइजिंग का असली रिजल्ट क्लिक्स नहीं, कस्टमर्स हैं। Introducing Smart Reach AI, powered by real foot traffic attribution. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits.
10: Ab hui na smart marketing.
6: Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers.
12: Smart Reach AI, a Panacea Network product. Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
13: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया 104.9 FM।

Well, that was the title track, मुझसे शादी करोगी. एंड जैसे कि मैं आपसे आईफिल टावर के बारे में बात कर ही रही थी, तो ये जो अब गिव अवे है वो भी आईफिल टावर से ही रिलेटेड है. लेकिन क्या है, क्यों है, सब बताती हूँ. पहले आपको बताना चाहूँगी मैं फ्यूजन रिपब्लिक इंडियन किचन एंड बार के बारे में. बिकॉज अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई लंच बफे दैट गोज़ बियॉन्ड द यूजुअल, यू नो, तो भैया फ्यूजन रिपब्लिक इज़ देयर फॉर यू. इट्स ऑलरेडी लव्ड इन रिचर्डसन एंड इज़ नाउ ब्रिंगिंग इट्स फैबुलस फ्यूजन फ्लेवर्स टू अ ब्रांड न्यू लोकेशन इन अर्विंग. आप इंजॉय करेंगे सम डिलिशियस 25 आइटम लंच बफे एवरी डे, फीचरिंग चाट्स, तंदूर प्लैटर्स, एग्जॉटिक फ्लेवर्स एंड फेवरेट्स जैसे कि सारेगा सांबा मटन बिरयानी, एप्रिकॉट मलाई कोफ्ता, चिली पनीर बाओ, बुर्राटा चिकन टिक्का एंड सो मच मोर. और डिनर जो है अलाकार्ट अवेलेबल है. सो यू डू नीड टू विजिट फ्यूजन रिपब्लिक. इट्स एट 8080 वॉल्टन बुलेवार्ड इन अर्विंग. फेमिलियर फ्लेवर्स, फैबुलस फ्यूजन. एंड अब आपके लिए आता है ये गिव अवे. गिव अवे में आप जीत सकते हैं या तो सारेगा सांबा या दम मटन बिरयानी या फिर वेजिटेबल दम बिरयानी. तो करना आपको बड़ा ही आसान सा काम है, क्योंकि हम पेरिस की बात कर रहे हैं, आईफिल टावर की बात कर रहे थे. तो आप मुझे बॉलीवुड के कोई भी दो गाने ऐसे बताएंगे जिसमें कि आईफिल टावर विजिबल हो. सो एनी टू बॉलीवुड सॉन्ग्स विच हैव आईफिल टावर विजिबल इन द वीडियो, यू हैव टू गिव मी अ कॉल. द नंबर इज 972-235-5555.

0: भाई होना क्या है, होना तो यही है कि अगर आप सही जवाब देंगे तो आप ये गिव अवे जीत जाएंगे। जी हाँ, फ्यूजन रिपब्लिक इंडियन किचन की तरफ से है ये गिव अवे। और मैंने पूछा आपसे सवाल, सवाल था ये कि आईफिल टावर की बात हो रही थी तो बॉलीवुड के कोई भी दो गाने बताएं जिनमें कि आईफिल टावर विजिबल हो। एंड वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस। हाय, यू आर लाइव ऑन एयर।
1: हाय हाय,
0: हाय, व्हाट्स योर नेम?
1: माय नेम इज भरत।
0: ऑल राइट भरत, तो बताइए कौन से दो गाने आप बताने वाले हैं?
1: यस यस, तो पहला सॉन्ग है इलाही फ्रॉम ये जवानी है दीवानी,
0: क्या
1: जिसमें
0: बात है।
1: रणबीर कपूर है,
0: ओके, या परफेक्ट।
1: और दूसरा है नशे से चढ़ गई है, विच इज फ्रॉम बेफिक्रे, रणवीर सिंह।
0: सो मतलब रणवीर, रणबीर बात तो बिल्कुल सही बताइए आपने, जीत गए आप। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई एम गोना टेक यू ऑफ एयर एंड टेक सम डिटेल्स फ्रॉम यू व्हाइल आई एम गोना प्ले बोथ द सॉन्ग्स दैट यू मेंशन फॉर आवर लिसनर्स। तो आप होल्ड करिएगा।
1: ओके
0: कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड जस्ट स्टे देयर। ओके, होल्ड ऑन।
1: ओके, थैंक यू।

अगर आपका जी आ गया है कुछ अच्छा अच्छा खाने का, लेकिन जी नहीं कर रहा है बनाने का, देन आपको मैं फ्लेवर लाउंज के बारे में बताना चाहूँगी, बिकॉज दे आर इन फ्रिस्को. जी हाँ, फ्लेवर लाउंज इज़ इन फ्रिस्को एंड इज़ सर्विंग एन ऑल न्यू वीकेंड लंच बफे, जहाँ पर आपको डिलिशियस डिशेज मिलेंगी, लाइव काउंटर्स हैं, शेफ स्पेशल्स मिलेंगे एंड फ्रेश फ्लेवर्स, ऑल फॉर जस्ट 24.99 पर पर्सन. सो ज्वाइन देम ऑन सैटरडेज एंड संडेज 12 to 3 PM. They are located at 5855 Preston Road, Frisco. क्योंकि यू नो वीकेंड पर अक्सर होता है कि यार एक तो लिस्ट भर के काम होते हैं, टाइम होता नहीं है, यू वांट टू रिलैक्स आल्सो, यू वांट टू चिल आल्सो, यू वांट टू फिनिश दोज चोर्स एज वेल, लेकिन खाना बनाने का टाइम नहीं है पर खाना अच्छा खाने का बहुत मन है. सो देन फ्लेवर लाउंज इज़ द प्लेस फॉर यू. फ्लेवर लाउंज, गुड फूड, ग्रेट मेमोरीज.

टेकन फ्रॉम द मूवी हीरो नंबर वन. जी हाँ, इसमें भी आईफिल टावर दिखा था. और आईफिल टावर की अगर मैं आपको जाते जाते कुछ बातें बताऊं, तो यू विल बी सरप्राइज दैट यू नो इट वाज सपोज्ड टू बी अ टेम्पररी टावर. यू नो वैसे भी पेरिशियंस जो पेरिस के लोग थे उनको ये आईफिल टावर बहुत ही गंदा लगा था, दे हेटेड इट. लेकिन वो होता है ना कि देखते देखते रहते रहते प्यार हो जाता है. नाउ दे आर सो प्राउड ऑफ आईफिल टावर. सो इट वॉज सपोज टू बी टेम्पररी, यू नो इट वॉज कंस्ट्रक्टेड फॉर द 1889 एक्सपोजिशन यूनिवर्सल एंड इट्स ओरिजिनल कंसेशन वॉज जस्ट फॉर 20 ईयर्स. लेकिन उसकी जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स या रेडियो कम्युनिकेशन के लिए जो यूजफुलनेस पता चली, दैट सेव्ड इट फ्रॉम डिसमेंटलिंग. Gustave Eiffel had a private apartment near the top. He maintained a small private apartment at the tower where he could receive guests and, you know, imagine, kya address hai aapka? Ji, hum Eiffel Tower pe rehte hain. Hai na, ye maze ki baat. Well, it's always, always fun talking to you all and playing some melodious songs along the way. It's time for me to say bye-bye. But aap kahin jaiyega nahi. Do stay tuned in to 104.9 FM, Fun Asia Radio, as yahan humare shows aapko entertain karte rahenge. Coming up next is Neelam. मैं मिलूंगी आपको कल सुबह 10 बजे in Just Chill, जहां करेंगे हम, as the name suggests, Just Chill. Well, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. This is Madhulika signing off.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोल की भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो,
6: हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
7: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259.
8: That garba was totally worth it. We had so much fun.
9: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
8: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
7: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
10: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
11: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
10: नहीं।
11: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
10: नहीं।
11: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
10: वो भी नहीं।
11: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
4: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। For your tax planning, bookkeeping and CFO services, visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
12: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
17: आप पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
15: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
18: Marvin Das and Bindas Services present the 6th annual South Asian Food Festival on October 31st at the Sound Venue in Coppell. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.

दिस इज KZMP 104.9 FM फनी शरीरों पे आप है मेरे यानी नीलम के साथ और एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में नीलम का प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. जी दोस्तों, आपका और हमारा साथ होता है हर शनिवार की दोपहर 12 से 3 के बीच में, जहां पे 2 बजे तक बॉलीवुड बेस्ड कुछ थीम बेस्ड गाने आपके लिए प्रस्तुत करूंगी मैं. एंड राइट आफ्टर 2 PM वी विल हैव अ कम्युनिटी राउंड अप. सुने आपने मधुलिका को टिल नून और आपका और हमारा साथ अब टिल 3 PM. इस महीने हमने बहुत ज्यादा बर्थडेज मनाए एंड आई रिमेम्बर बैक टू बैक 2 या 3 सेगमेंट मैंने बर्थडेज के लिए किए थे. क्यों, क्या करें भाई, जब बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों की बात निकलती है, खास उनके जब जन्मदिन होता है, तब लगता है कि चलिए बैक टू बैक बातें हो ही जाए. वरना अमूमन हमारे पास और भी बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, बहुत भी बातें होती है. एंड यू नो व्हाट, एक ऐसे डायरेक्टर है जिनका जन्मदिन था 20th और मैं करना चाहती थी लेकिन मौका नहीं मिला. तो मैंने सोचा कि बिफोर वी एंड दिस मंथ क्यों ना आज उनकी बातें की जाए, उनकी फिल्मों की बातें की जाए, उनकी ज़िंदगी की बातें की जाए. एंड ही सच अ डायरेक्टर जिनकी फिल्म बहुत इम्पैक्ट होती है, जिनकी फिल्म को देखकर आप कुछ लम्हों तक उसके लिए सोचते रहते हैं. वो अच्छे प्रोड्यूसर भी है, अच्छे डायरेक्टर भी है एंड अच्छे स्टोरी राइटर भी है. जी हाँ, वो डायलॉग्स भी लिखते हैं, कहानियाँ भी लिखते हैं और फिल्म्स को डायरेक्ट भी करते हैं. तो एक ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत उनकी जो फिल्म है, ज़्यादातर उनके डायरेक्शन में बनी हुई फिल्मों की करेंगे हम बातें ऑन 104.9 FM फनीश टिल 2 PM.

सड़क फिल्म से सुना आपने ये पहला गीत इस सेगमेंट में, और इतने सारे कॉल्स जी बिल्कुल आपने सही पहचाना कि आज मैं बातें करने जा रही हूँ महेश भट्ट की। उनकी फिल्मों की बातें करेंगे, उनकी कहानियों की बातें करेंगे, और एक ऐसे डायरेक्टर है जिन्होंने सिर्फ हमें कहानियाँ नहीं दी, सिर्फ फिल्म्स नहीं दी, लेकिन मैं मानती हूँ कि उनकी जहाँ जहाँ उनकी फिल्मों में उन्होंने डायरेक्शन भी दी थी, जहाँ पे उन्होंने कहानियाँ लिखी थी, इट वाज लाइक उन्होंने अपनी रूह को निकाल कर पर्दे पर रख दिया था। एंड दैट इज़ महेश भट्ट, एक ऐसे इंसान जो अपनी फिल्मों के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन ऑफ़ फिल्म्स भी उनकी जिंदगी की बातें होती, इंटरव्यूज़ की बातें होते, जहाँ पे बेपरवाह वो हमेशा अपने दिल में जो आया उन्होंने, जो अपनी ज़िंदगी की बातें थी, कभी भी ऐसा नहीं रखा कि अरे भाई दिस इज़ यू नो बिटवीन मी एंड माय वाइफ, दिस इज़ बिटवीन मी एंड माय एक्स, या मेरे बच्चों की बात है। उन्होंने हमेशा अपनी ज़िंदगी को एक खुली किताब की तरह रखा। तो आज बस वहीं महेश भट्ट की हम करेंगे बातें आपके साथ। उनके फिल्मों के गाने इतने म्यूजिकल होते हैं, तो वो सारे गाने आपके लिए प्रस्तुत करूँगी यहाँ पे 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर विथ मी योर होस्ट नीलम।

नाजायज फिल्म से सुना आपने ये गीत, और फिल्म का नाम सुनकर शायद आपको पता चला होगा कि इस फिल्म को भी महेश भट्ट साहब ने ही डायरेक्ट किया था। एज आई वॉज सेइंग कि यू नो, महेश भट्ट साहब एक ऐसे डायरेक्टर है, एक ऐसे प्रोड्यूसर है, एक ऐसे कहानी राइटर है जिन्होंने कहानियां कहीं ढूंढी नहीं है। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि कहानी कहाँ मिलेगी। ऑफकोर्स AI तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी ही, वो अक्सर ये कहते थे इंटरव्यू में कि मेरी खुद की ज़िंदगी इतनी दिलचस्प रही कि मुझे कहानियों के लिए किसी और स्क्रिप्ट राइटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि अमूमन ये होता है कि हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं उनकी कहानी कोई और लिखता है, दे डोंट राइट देमसेल्व्स, डायरेक्टर्स खुद डायरेक्ट करते हैं लेकिन कहानियाँ नहीं लिखते। लेकिन महेश भट्ट साहब ने बहुत सारी ऐसी फिल्म है जिसकी कहानियाँ भी खुद लिखी है। बहुत कुछ उनकी ज़िंदगी की भी बातें करेंगे, कुछ उनकी बातें करेंगे, उनकी फ़िल्मों की बातें करेंगे, एंड मोस्टली आज जितनी भी फिल्में आपके लिए लाई हूँ, जो बातें लाई हूँ, जो खुद उन्होंने कहानी भी लिखी है, जो खुद उन्होंने डायरेक्ट भी की है। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर 2000 आई थिंक ही वाज जस्ट अ प्रोड्यूसर, ही वाज नॉट रियली डायरेक्टिंग एनी मूवी एज सच, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी मूवी उन्होंने डायरेक्ट की है इन 90s के दौर की अगर हम बात कर ले तो। चलिए एक ऐसा बहुत ही खूबसूरत गीत हम सुनते हैं, सातवां आसवां, यह है फिल्म का नाम आपके लिए 104.9 FM FunAsia Radio। मैं हूँ नीलम आपके साथ एवरी वीकेंड।

0: और बिल्कुल ये प्यार आपको गानों से भी होगा, संगीत से भी होगा, ऐसे अच्छे अच्छे गाने आपके लिए मैं नीलम प्रस्तुत करती रहूंगी टिल 2 PM। कहीं मत जाएगा और आपसे मुलाकात होगी इस संगीत के सफर में, इस बातों में, आफ्टर दिस ब्रेक।
1: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाई, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, टैक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, रियल एस्टेट स्ट्रेटजीज, AI एंड लेट स्टेज प्री IPO अपॉर्चुनिटीज एंड अदर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। लर्न हाउ अ पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजी कैन हेल्प यू परस्यू योर फाइनेंशियल goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: We need to talk.
4: अब क्या हुआ?
3: Nothing. It's not you.
4: Oh no.
3: It's the distance.
4: Distance? We live 10 minutes apart.
3: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
2: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
5: Kya matlab?
6: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
6: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: Ab to karna hi padega, madam.
7: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: It's the time to clock out.
9: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, jahan tandoor ki smoky khushboo, sizzling flavors aur chatpate appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m., order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
10: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
12: Everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights B.
2: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
13: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
14: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
15: तुमसे मिलके दिल का है।
14: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

एंड वेलकम बैक, दिस इज KZMP 104.9 FM फनीश रेडियो पे आप है मेरे यानी कि नीलम के साथ. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम. अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है, वेल आज हम महेश भट्ट साहब के गाने सुन रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बर्थडेज बनाए एंड यू नो बिफोर वी एंड दिस मंथ मैंने सोचा कि 20th September वॉज हिज बर्थडे एज वेल. तो उनकी फिल्मों की इतनी अनेरी बातें होती है, उनके गाने इतने म्यूजिकल होते हैं, तो बनता ही है उन पर एक शो करना, उनके सेगमेंट पे उनको कुछ हम याद कर लेते हैं आज यहाँ पे ऑन 104.9 FM. और जो एक ऐसे डायरेक्टर है जो खुद अपनी फिल्मों की उन्होंने कहानियाँ लिखी है, नॉट एवरी कहानी, हर कहानी नहीं लिखी है हर फिल्म की, लेकिन जहाँ जहाँ उन्हें मौका मिला है उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी है, उस खुद फिल्म को डायरेक्ट भी किया है. तो ये सारी बातें चलती रहेगी मेरे साथ, लेकिन चलिए लंच टाइम हो चुका है तो आपके लिए कुछ हम लंच की इन्फॉर्मेशन दे दें आपको. पेज 3 इटरी आप बिल्कुल जा सकते हैं एंड इट इज लोकेटेड एट हब 121, जहां पर आपके लिए चाट भी है, फ्यूजन बाइट्स भी है, रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स भी है, और आप सोच रहे कि दोस्तों को मिलना है, परिवार को कहीं ले जाना है, बच्चों को कहीं ले जाना है, तो वेल दिस इज द प्लेस एंड दैट इज वंस अगेन पेज 3 इटरी. और जब बात निकली है खाने की, चलिए तो आपको मैं बरिस्टा की भी बात कर लूँ कि क्योंकि अब फ्रिस्को में है आपके लिए ये सारी बातें. जी हाँ, इट यूज टू बी इन लुइसविल और आपको लगता था डेंटन एक्चुअली, एंड नाउ द पॉपुलर बरिस्टा हाउस इज फ्रॉम डेंटन इज नाउ इन फ्रिस्को. तो आप जहाँ पर भी लोकेशन है आपका, फ्रिस्को है, प्लानो है, कोई नज़दीकी एरिया में, एंड बिल्कुल आप जा सकते हैं फॉर ऑथेंटिक हैदराबादी बिरयानी, नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स एंड कुछ ऐसे ही बहुत सारे चटपटे व्यंजन के लिए, एंड दैट इज बरिस्टा. 6377 कस्टर रोड फ्रिस्को में है लोकेटेड, और उनकी तरफ से गिव अवे भी होगा. बिल्कुल होगा भाई, हम आपके लिए कोई सवाल भी लाए हैं, बहुत सारे एक्चुअली सवाल होते ही हमारे सेगमेंट में, कहीं ना कहीं आपकी राय भी लेती हूँ, कहीं ना कहीं कुछ आपसे सवाल भी पूछती रहती हूँ, तो वो सारी बातें भी होती रहेंगी यहाँ पे मेरे यानी कि नीलम के साथ टिल 2 PM ऑन 104.9 FM.

महेश भट्ट साहब, यानी कि उनकी जो फिल्म्स होती है वो कन्वेंशन नहीं होती, जो टिपिकल बातें हम होती है देखते हैं फिल्मों में वो उनकी बातों में नहीं होती, उनके कैरेक्टर्स परफेक्ट नहीं होते, उनके हीरो की या हीरोइन की बातें भी परफेक्ट नहीं होती, कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं होगा कि वो अक्सर वो कहते हैं ना कि टिपिकल कमर्शियल फिल्म्स में कि बहुत सारे विलन होते हैं और एक ही हीरो होता है और इतनी सारी मारपीट होती है और हीरो जीत जाता है या हीरो को हीरोइन मिल ही जाती है, ऐसी बातें महेश भट्ट की फिल्मों में बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि उनके जो किरदार थे वो हमेशा कहते थे कि वो सारे किरदार स्ट्रगल से आए थे, जहाँ जहाँ उन्होंने कहानियाँ लिखी बहुत सारी उनकी जो कहानियाँ रही कहीं ना कहीं अपनी निजी ज़िंदगी अपनी पर्सनल लाइफ की ही थी, और कुछ कहानियाँ उन्होंने अक्सर ऐसे स्ट्रगल वाले कैरेक्टर्स लिखे, ऐसे नॉट सो परफेक्ट उनके हीरोज़ रहते थे, नॉट सो परफेक्ट उनकी हीरोइंस रहती थी, और इसीलिए वो प्यार भी करते थे, गलतियाँ करते थे, टूट जाते थे, ऐसे बहुत सारी ऐसी उनकी फिल्में आई है और आती रहेगी। आई डोंट थिंक ही इज़ डायरेक्टिंग एनी मोर, लेकिन हाँ बिल्कुल एज अ प्रोड्यूसर ही स्टिल देयर। तो जो डायरेक्शन में उनकी बनी है, जहाँ जहाँ उन्होंने कहानियाँ लिखी है, ऐसी ही ज़्यादा फिल्म मैं आपको आज लाई हूँ और उनकी बातें सुनवा रही हूँ। अगली जो फिल्म है वो है हमारी अधूरी कहानी। दिस केम इन लेट 2000, आई थिंक जस्ट फ्यू ईयर्स अगो, एंड अगेन ये भी कहा जाता है कि उन्हीं की निजी ज़िंदगी, उन्हीं के कुछ ज़िंदगी के पन्नों को पलटाते हुए उन्होंने लिखी भी थी और बनाई भी थी। ऑन 104.9 FM वनीश, आप है मेरे यानी कि नीलम के साथ।

हमारे अधूरी कहानी से लिया गया था गीत. एंड यू नो महेश भट्ट साहब ने अपने करियर की शुरुआत कर ली थी 70s. ऐसा नहीं था कि ही जस्ट केम इन 90s. ये अलग बात है कि उनकी पहचान बनी लेट 80s में या 90s में, लेकिन उन्होंने 70s से अपनी फिल्मों की कहानियां बनानी. या ही वॉज ट्राइंग टू बी अ डायरेक्टर फ्रॉम 70s. लेट 70s में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था लहू के दो रंग, उसके वो डायरेक्टर थे. एंड इफ़ यू रिमेंबर उसके बहुत अच्छे अच्छे गाने भी है. शबाना आजमी है उसमें और उनके साथ विनोद खन्ना. जी हाँ, सो दैट वॉज हिज फर्स्ट, आई थिंक फर्स्ट फिल्म वॉज इन 70s, इवन बिफोर लहू के दो रंग. लेकिन उन्हें वो बात नहीं मिल रही थी, वो फिल्म उन्हें नहीं मिल रही थी जो वो करना चाहते थे. क्योंकि देखिए प्रोड्यूसर जो होते हैं, ही दे ऑलवेज वॉन्ट अ डायरेक्टर जिसके विजन पे, जिसकी स्टोरी टेलिंग स्टाइल पर खुद को कन्विक्शन हो कि भाई ऐसे ही नया लड़का कह रहा है कि मैं फिल्म को डायरेक्ट करूंगा तो थोड़े ही कोई प्रोड्यूसर दे देगा. दे विल हैव टू थिंक ट्वाइस थ्राइस एंड सो मेनी टाइम्स कि ये इस लड़के को फिल्म दे या नहीं. खैर, तो उन्हें लव के दो रंग मिली थी. 80s में भी वो बिल्कुल एफर्ट करते रहेंगे, तो उनकी फिल्मों की अर्ली 80s या 90s की भी हम बातें करेंगे. लेकिन महेश भट्ट साहब ट्रेंड सेटर भी रहे. एक ऐसी फिल्म उन्होंने बनाई जो कभी भी थिएटर में रिलीज नहीं हुई थी. जी बिल्कुल, और ही वॉज फाइन विद दैट. जब उन्हें ये फिल्म उन्होंने बनाई और प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई देखिए ये फिल्म हम रिलीज नहीं करेंगे थिएटर में, बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग कि हमें लगता है कि लोग टिकट लेकर बॉक्स ऑफिस को उसे सक्सेसफुल बना देंगे. सो विल डू जस्ट फिल्म टीवी रिलीज, विच वॉज अ वेरी फर्स्ट टाइम एवर इन टीवी हिस्ट्री. टीवी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि फिल्म सिर्फ टीवी पर डायरेक्टली रिलीज हो. लेकिन महेश भट्ट साहब महेश भट्ट थे, उन्होंने किया. एंड दिस फिल्म बिकेम अ ब्लॉकबस्टर एज वेल. फिल्म का नाम फिर तेरी कहानी याद आई.

शायराना सी है ज़िंदगी, आप भी ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। बहुत ही खूबसूरत ये गीत आपने सुना, फिर तेरी कहानी याद आई, और उसके इतने अच्छे अच्छे गाने हैं जो आपने सुने होंगे, बार बार सुने होंगे। एंड यू नो आई ट्राई समटाइम्स कि जो फिल्म्स के गाने आप बार बार सुनते हैं लेकिन उसी फिल्म में बहुत सारे अच्छे और भी गाने होते, वो लाने की भी मेरी छोटी सी कोशिश होती है यहाँ ड्यूरिंग दिस सेगमेंट एवरी सैटरडे एंड ऑफकोर्स ऑन संडेज एज वेल, दैट इज 12 to 2 PM ऑन संडे आफ्टरनून। तो ये तो बात हो गई, फिर तेरी कहानी याद आ गई। एंड यू नो कहीं पे मैंने कहानी एक पढ़ी थी, महेश भट्ट साहब की नहीं, ऐसी ही कहानी पढ़ी थी कि एक लड़का था, ही वॉन्टेड टू डू समथिंग क्रिएटिव एंड ही गोज़ टू अ सेंट, वो किसी सेंट के पास जाता है कि मुझे कुछ क्रिएटिव करना है। तो सेंट को लगा कि भाई क्रिएटिविटी इज़ नॉट समथिंग कि यू नो इट कम्स विथ योर लाइफ, इट कम्स विथ योर ब्लड, इट कम्स इन योर जीन्स वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी उसे कुछ करना था, किसी भी कला में उसे कुछ करना था। तब उसे एक सेंट ने कहा कि देखिए, जो क्रिएटिविटी आती है किसी की भी ज़िंदगी में, किसी भी आर्टिस्ट की ज़िंदगी में, वो अक्सर कहीं ना कहीं किसी अधूरेपन से होती है, किसी पेन से आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो शायर होते हैं, जो जिनकी शायरी होती है, जो गीतकार होते हैं, जो लिखते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दर्द होता है जो निकलता है। एंड दैट कैन बी यू नो फॉर एनी आर्टिस्ट कि जो आपके इमोशंस हैं, जो आपके एक्सप्रेशंस हैं, दैट कम्स इन द मीडियम ऑफ योर आर्ट। इट कुड बी एन एक्टर, इट कुड बी अ सिंगर, एनीथिंग, राइट, एनीथिंग रिलेटेड टू एन आर्ट। महेश भट्ट साहब पे ये कहानी इतनी अप्लाई होती है। उनके ज़िंदगी के जितने भी घाव थे, उनके बचपन के, उनके पापा के साथ या उनकी माँ के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी, उनके भाई बहन के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, एंड देन व्हेन ही ग्रोज़ अप, उनकी पर्सनल लाइफ में जितने भी उनके इंटरेक्शन रहे, उनकी शादी के लिए या उनकी यू नो बिफोर शादी, आफ्टर शादी, ड्यूरिंग शादी,

साथ जो नाइंसाफी हुई थी, उनके भाई बहन के साथ नाइंसाफी हुई थी, एंड देन व्हेन ही ग्रोज अप, उनकी पर्सनल लाइफ में जितने भी उनके इंटरेक्शन रहे, उनकी शादी के लिए या उनकी यू नो बिफोर शादी, आफ्टर शादी, ड्यूरिंग शादी, तो मैं नाम ले नहीं, अमूमन मैं नाम नहीं लेती किसी भी आर्टिस्ट की जब भी बात हो पर्सनल लाइफ की, हालांकि ये सारे इंटरव्यूज़ में उन्होंने बात की होगी. खैर, सो दैट्स नॉट द पॉइंट हियर. द पॉइंट इज़ उन्होंने जितनी भी अपनी कहानियाँ लिखी, जितनी भी कहानियाँ बनाई, कहीं ना कहीं अपने अधूरप की वो कहानी बनाई थी. जो जख्म उन्हें मिले थे, जो घाव उन्हें मिले थे सोसाइटी से, अपने पर्सनल इंटरेक्शन से, उनके पर्सनल रिश्तों से, वो सारी बातें उन्होंने इन फिल्मों में डाल दी थी. इसीलिए जब भी हम वो उनकी फिल्म देखते हैं, तब लगता है कि जैसे कि दर्द कहीं ना कहीं हर कैरेक्टर में है. और इस फिल्म के लिए अजय देवगन साहब को मिला था नेशनल अवार्ड, एंड दैट फिल्म इज़ जख्म ऑन 104.9 FM.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
9: Call 857-891-8942 today.
10: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
11: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
10: Fikar not. We have the perfect solution.
9: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
12: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
13: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
12: Miss Clicks.
14: 100 logon ne click bhi kiya.
12: Customers kitne aaye?
15: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
16: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Fun Asia Network product.
17: Ye last Diwali pehna tha. ये नेहा की शादी में इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है।
18: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
19: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बाली के।
17: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
19: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। Tathastu.
9: Discover stunning lehengas, elegant saris, bridal jewelry, and festive styles for men and kids. All at Indian Attire on 2995 Preston Road, Frisco. Indian Attire, Frisco. Your divine destination for festive fashion.
20: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
21: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
9: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी. Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
22: Sathiya!
23: Kuch awaazein sirf entertain karti hain aur ek awaaz aapki zindagi ka soundtrack ban jati hai.
24: Deewana tera.
25: Wahi awaaz
0: आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
23: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
1: तुमसे मिलके दिल का है.
0: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
23: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
2: एंड वेलकम बैक. दिस इज KZMP 104.9 FM फनेशिया रेडियो पे. मैं हूं नीलम आपके साथ. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम. प्यार भरा स्वागत है आप सभी का. अगर आपने अभी अभी रेडियो ट्यून इन किया है, वेल बातें हो रही है आज महेश भट्ट साहब की. उनकी जिंदगी के कुछ किताब के पन्ने उन्होंने कुछ नहीं बहुत सारे खोले ही हैं हमारे सामने हर एक फिल्म के जरिए, लेकिन आज हम उनकी ही फिल्मों के कुछ गाने सुन रहे हैं यहाँ पर टिल 2 PM एंड राइट आफ्टर दैट वी विल हैव अ कम्युनिटी राउंड अप. And this part of our show is presented by and brought to you by AG Fintechs. Number is 469-942-9888 or you can visit agfintechs.com. They are very trusted, reliable and you can of course rely on them for any of your business services. Individual ki baat ho ya business baat ho. Ikhi naam and that is AG Fintechs. Once again, the website is agfintechs.com. जहाँ जहाँ उन्होंने नाइंसाफ़ी देखी, ज़िंदगी की बात हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, अपने पापा की तरफ से अपनी मम्मी की नाइंसाफ़ी, जहाँ जहाँ वो सारी कहानियाँ उन्होंने पन्ने पर डाली और वो कहानी बड़े पर्दे पर उन्होंने दिखा दी. क्योंकि कहा जाता है कि जो क्रिएटिविटी उनकी थी वो उनके दर्द से हुई थी, जो उनके अधूरप थे उनमें ज़िंदगी में, उन्हें कहीं ना कहीं वो प्यार नहीं मिला शायद. नॉट अ कम्प्लीट फैमिली, नॉट अ वेरी वैलिड लीगल आइडेंटिटी, ये सारी बातों ने उन्हें महेश भट्ट साहब फिल्म मेकर बना दिया. एंड दैट वॉज अ वेरी रीज़न कि उन्होंने भी कभी अपनी ज़िंदगी की, आई डोंट थिंक ही एवर नीड्स टू राइट अ बायोग्राफी. क्योंकि अक्सर हम यू नो इंतज़ार में रहते हैं कि कोई एक्टर हो या डायरेक्टर हो या एनी सेलिब्रिटी फॉर दैट मैटर, उनकी बायोग्राफी हम पढ़ने की कि उनकी ज़िंदगी के कितने किस्से कहानियाँ हैं जो शायद कभी भी हमने नहीं सुने, नहीं पढ़े. महेश भट्ट साहब के लिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अगर बायोग्राफी लिखी भी तो भी अब तक कहा उनकी ज़िंदगी की जो भी बातें उनकी फिल्मों के ज़रिए उन्होंने बता ही दी थी. खैर, ये बातें हम करते रहेंगे. ले चलती हूँ आपको एक ऐसी फिल्म की तरफ जो शायद आपने देखी होगी, शायद नहीं भी देखी होगी. डैडी की बात कर रही हूँ, जी हाँ, जिसमें एक बेटी और पिता की बात है, डैडी एंड बेटी. एंड इट वॉज सच ए ब्यूटिफुल फिल्म. अर्ली 90s की ये फिल्म है. अगर आपने नहीं देखी ज़रूर देखेगा. एन अल्कोहलिक डैड जो है अनुपम खेर, और उनकी बेटी का रोल निभाया है पूजा भट्ट ने. तो जो इंसान अपनी ज़िंदगी से भागता रहता है, जो इंसान अपनी ज़िंदगी के रिश्तों से भागता रहता है, इतनी खूबसूरती से. एंड यू नो आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर आफ्टर दिस सॉन्ग, क्योंकि इतनी सारी बातें होती है फिर गाने नहीं होंगे, राइट? तो चलिए पहले ये गज़ल सुन लेते हैं, उसके बाद कुछ और बातें करेंगे महेश भट्ट साहब की फिल्मों की ऑन 104.9 FM.
22: तो मैं जानती थी मुझे इस अजीब शरीफ आदमी से बार बार मिलना है, लगता है.
2: और इस फिल्म में उनके साथ छोटा सा, बहुत छोटा सा रोल किया था सोनी राजदान.

कभी ख्वाब में या ख्याल में, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ आपने सुनी। और फिल्म का नाम वंस अगेन डैडी, फिल्म से सुना आपने ये गीत। एंड फॉर हिज कैरेक्टर्स, जैसे कि मैं पहले भी मैं बता रही थी कि उनके सिनेमा, उनके जितने भी फिल्म थी, सबसे अनयूजुअल क्वालिटी, यूजुअल क्वालिटी कह दीजिए, अनयूजुअल क्वालिटी कह दीजिए, कि वो उनके जो कैरेक्टर्स थे उन्हें कभी भी वो हीरो नहीं दिखाते थे कि ही हैज़ टू बी परफेक्ट। किसी भी फिल्म में उनकी या हीरोइन या हीरोइन जो किरदार दिखते थे, वो खुद जिसे डायरेक्ट करते थे, वो कभी भी ऐसे हीरो नहीं होते थे कि जिनकी ज़िंदगी में हर कुछ अच्छा ही होता है और उनके पास परफेक्शन होती है। द हीरो इज़ सो परफेक्ट, उनके ड्रेसिंग परफेक्ट है, उनकी डायलॉग, उनकी हीरो में परफेक्शन नहीं होती थी। वो मानते थे कि हीरो जो है किरदार, जो हम की खुद की ज़िंदगी या हो या किसी और की ज़िंदगी, लेकिन हर ज़िंदगी के जो यूजुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जो परफेक्ट नहीं होते, वैसे उनके कैरेक्टर्स होते थे। ऑन दैट नोट मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऑफकोर्स अर्ली 90s में उन्होंने बहुत सारी अपनी पर्सनल लाइफ पे, ज़िंदगी पे उन्होंने बहुत सारे फिल्म्स बनाई, कुछ दूसरों की ज़िंदगी पे भी बनाई होगी, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने कमर्शियल फिल्म्स बनाई है, इफ़ यू रिमेंबर। एंड व्हेन आई से कमर्शियल, दिस वर नॉट द आर्ट फिल्म्स, राइट? अर्थ की बात कर लीजिए, सारांश की बात कर लीजिए, डैडी, जख्म, दिस वर नॉट लाइक अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म। उन्होंने भी बहुत अच्छा बिजनेस किया था, बट व्हेन आई टॉक अबाउट द कमर्शियल कमर्शियल फिल्म्स, जो टिपिकल फिल्म रहती थी, जो रोमांटिक फिल्म होती है जिसमें एक्शन भी होती है वगैरह वगैरह, ऐसी भी उन्होंने कुछ फिल्म बनाई हैं। तो अगर आपको एक या दो नाम याद है जो, एंड वन नेम आई कैन थिंक टॉप ऑफ माई हेड इज़ अ वेरी लाइट हार्टेड कॉमेडी काइंड की उन्होंने बनाई है, तो ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इफ़ यू रिमेंबर महेश भट्ट के डायरेक्शन में बनी हुई कोई एक ऐसी फिल्म जो लाइट हार्टेड कॉमेडी रही, चलिए इफ नॉट अ कमर्शियल टिपिकल फिल्म, लेकिन बहुत ही लाइट हार्टेड रही, तो मुझे बताइएगा। बिल्कुल, आपको एक गिव अवे भी मिल सकता है। 104.9 FM फनेशिया रेडियो पे मैं हूँ नीलम आपके साथ, और सवाल है कि कोई लाइट हार्टेड उनकी ऐसी फिल्म हो, कॉमेडी फिल्म, जो आपको याद है महेश भट्ट साहब की।

0: बहुत सारे ऑफ़ेयर कॉल्स, बहुत सारी बातें, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपके ढेर सारी पसंद के लिए, और ढेर सारे आपकी जो हमारी सराहना गानों की हो रही है, नॉट मेरी, गानों की, एंड ऑफ़ कोर्स मैंने नहीं गाए ऑफ कोर्स, तो ये गाने जो सुना रही हूँ आपको फिल्मों से सुना रही हूँ, एंड बहुत बहुत शुक्रिया हमारी पसंद को पसंद करने के लिए। चलिए एक कॉल ऑन एयर भी ले लेती हूँ। फनीश, आई यू लाइव ऑन एयर?
1: Hi, my name is Sharmila.
0: Yes, batayi. Yeah,
1: so the answer to your question for light-hearted movie for directed by Mahishwar would be Hum Hai Rahi Pyar Pyar Ke.
0: Yes.
1: Amir Khan, Krish Chawla and Kunal Khemu.
0: Yes. Very, very cute film, right? Chote chote bacche the.
1: It was a beautiful film. Yeah.
0: And Juhi Chawla was so cute. And unki jo love story thi Amir Khan and Juhi Chawla ki, it was a very, very cute love story. So thank
1: you so much.
0: And
1: that reminds me, I should watch it again.
0: Please yes, you should. You should. And you know, after an intense day, unki jo bahut sari intense films back to back aati thi. And after that, when he made this, it was like a different, completely a fresh breath, tha, right? तो बहुत अच्छा लगा।
1: Beautiful, fun story, lovely music, and it was a very good watch.
0: Yes, absolutely. Thank you so much, ma'am. और बहुत ऐसे ही हमारे पास कॉलर है, बहुत लोगों ने हमें दिल है कि मानता है कि भी बात कही कि भाई इट वाज आल्सो अ कॉमेडी। यस, इट वाज काइंड ऑफ लाइट कॉमेडी एंड अ टिपिकल कमर्शियल फिल्म बनी थी। नाम करकर भी एक फिल्म आई थी, इफ यू रिमेम्बर, संजय दत्त की जो फिल्म थी, संजय दत्त एंड कुमार गौरव, दैट वॉज ऑल्सो मेड बाय महेश भट्ट।

महेश भट्ट साहब कभी भी अपने इंटरव्यूज के दौरान ही हैज़ नेवर यूज्ड एनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, जो अक्सर सेलिब्रिटीज पर्सनल जो उनकी इंटरव्यूज में पहले पूछ लेते हैं. बिकॉज आई ऑल्सो डू सम इंटरव्यू, सो आई नो सम ऑफ द सेलिब्रिटीज विल आस्क मी कि कौन से सवाल है. एंड ऑफ कोर्स आई डोंट गेट टू डू बिग बिग सेलिब्रिटीज की मैं इंटरव्यूज नहीं ले सकी अभी तक. लेकिन खैर, द पॉइंट इज सेलिब्रिटीज डू वॉन्ट टू मेक श्योर कि भाई आप सवाल कौन से पूछना चाहते. आई एम श्योर महेश भट्ट उनको कहते होंगे, इंटरव्यूअर को, कि भाई जो पूछना है पूछो, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी छुपाने की बात नहीं है. एंड दैट इज़ महेश भट्ट, अ वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट पर्सन, जिन्होंने कभी भी कोई फिल्टर्स अपनी ज़िंदगी के नहीं रखे, अपनी फिल्मों के नहीं रखे. जो भी उनके दिल में था उन्होंने बेबाक कहा था, अपनी ज़िंदगी की अपनी जो भी राय थी वो भी उन्होंने कही थी. सो एक इंटरव्यू के दौरान किसी ने उन्हें पूछा था कि आपने अर्थ जैसी फिल्म बनाई है, आपने सारांश बनाई, डैडी बनाई, एंड देन यू मेड दिस नाम सड़क बना दी, आपने दिल है कि मानता नहीं, हमें रही प्यार के, एंड यू नो द सीरीज ऑफ आवारापन की बात हो या मर्डर की बात हो, बहुत सारे ऐसे फिल्म्स आपने बनाई, क्यों, वेर इज़ द क्वालिटी ऑफ अर्थ एंड सारांश. एंड उन्होंने हंसकर ये कहा था, आई रिमेंबर वॉचिंग दैट इंटरव्यू, उन्होंने कहा था कि देखो भाई, एज अ डायरेक्टर व्हेन आई वॉज न्यू इन द इंडस्ट्री आई वॉन्टेड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. मुझे जो मेरी ज़िंदगी में हुआ था, जितने मेरी इंटेंसिटी थी, जो मेरे इमोशंस थे, आई वॉन्टेड टू शो इट ऑन अ बिग स्क्रीन. बट एट द सेम टाइम आई हैड अ फैमिली दैट दे नीडेड टू सर्वाइव. ऑफकोर्स मेरे छोटे छोटे भाई थे, उनको मुझे सेटल करना था, एस्टैब्लिश करना था. एंड फॉर देम देन आई स्टार्टेड मेकिंग मर्डर सीरीज की बात हो या आवारापन है, एंड उनके बहुत और भी फिल्म आई थी लेट 2000 में एंड ऑल. लेकिन अर्थ की बात आप कर ले, सारांश की बात कर ले, डैडी की बात कर ले, सखम, या ऐसे बहुत अच्छी अच्छी फिल्म जो मैंने तब बनाई थी, दैट वॉज ओनली एंड ओनली टू एक्सप्रेस माई सेल्फ ऑन द बिग स्क्रीन. एंड ऑन द नोट ऑफ अर्थ, अगर ये गज़ल ना सुने तो महेश भट्ट साहब की जर्नी कंप्लीट कैसे हो. ऑन 104.9 FM.

सिर्फ एक सिंपल गिटार की धुन के साथ जगजीत सिंह साहब की आवाज़, लेकिन इतनी खूबसूरत बोल है। एंड फिल्म का नाम अर्थ, कोई ये कैसे बताए। और पति पत्नी और दूसरी औरत, ये जो एक कहानी है बहुत सारे डायरेक्टर्स ने बनाई है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस की होगी, बहुत सारे कहानी हमने देखी है, लेकिन अर्थ इज़ अर्थ। आफ्टर सो मैनी ईयर्स, आफ्टर सो मैनी डेकेड्स, आई वुड से दशकों के भी बाद भी ये फिल्म इतनी ही इम्पैक्टफुल लगती है। और शबाना आज़मी, स्मिता पाटिल और उनके साथ जो थे वेरी वेरी पावरफुल एक्टर कुलभूषण खरबंदा, और ये फिल्म जब उन्होंने बनाई, ही वॉज़ वेरी क्लियर अबाउट दिस फिल्म कि ये फिल्म खुद मेरी ज़िंदगी की है। एंड यू नो देर आर वेरी रेयर, आई वुड से वेरी रेयर सेलिब्रिटीज़ या यूनिक, ओनली वन एंड ओनली महेश भट्ट साहब, कि जो कभी भी उन्होंने ये एक बात, ही वॉज़ नेवर हेजिटेंट कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ था, आई वॉज़ अ फेलियर एज अ हस्बैंड, ये बताने में। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि शबाना आज़मी को इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला था द एंड में इस। एंड एज आई सेड, यू नो इट इज़ नॉट जस्ट अ स्क्रिप्ट, इट इज़ अ डायरेक्शन एंड इट इज़ अ वे द होल फिल्म हैज़ बीन पोर्ट्रेड ऑन द बिग स्क्रीन, जो उनके किरदार को दिखाया गया है। अंत में जब शबाना आज़मी के लिए रिश्ता, आई मीन किरण, आई थिंक किरण उनका नाम, किरण, खैर आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर दैट गाय, राज किरण, यस राज किरण, जब उन्हें कहते हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहूँगा और समथिंग लाइक दैट, और उनकी जो बात होती है वो कहती है, मेरी पहचान किसी पुरुष के साथ रहने से या नहीं रहने से तय नहीं होगी, अगर मैं आपके साथ शादी करूँ या नहीं करूँ उससे मेरी आइडेंटिटी नहीं बनती। सो दैट इज़ महेश भट्ट, कि वो अपनी फिल्मों में वो पुरुष को, यानी कि मेल कैरेक्टर्स को वीक दिखा सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी फिल्मों में अक्सर फीमेल कैरेक्टर्स को बहुत ही स्ट्रांग दिखाया था। एंड दैट इज़ अर्थ। उन्होंने म्यूजिकल फिल्में भी बहुत बनाई, जैसे कि आशिकी।

0: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
1: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
0: दैट मैजिक रिमूवल हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
1: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
2: इंडिया में घर खरीदना हुआ आसान गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है फ्रिस्को में अक्टूबर 10th एंड 11th हाथ रीजेंसी फ्रिस्को 10 a.m. टू 8 p.m. मुंबई बैंगलोर पुणे चेन्नई हैदराबाद एंड दिल्ली एनसीआर के टॉप डेवलपर्स से मिलने का एक ही मौका चूज योर होम फ्रॉम 200 प्लस प्रोजेक्ट्स Free entry and free parking. An event by My Square Feet.
0: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? Key Person Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
3: Wait a minute. Who are you?
4: Did someone say $100 credit for pizza? If you have an Amex Platinum card, you may be eligible for a $100 credit at Fun Pizza Kitchen. Treat yourself to cheesy favorites, special flavors, and mouth-watering toppings that'll have you coming back for another slice. Just visit the Fun Pizza Kitchen Frisco location before September 30th. For eligibility and details, call the Frisco location or simply walk in. Fun Pizza Kitchen. Bring your appetite. We'll bring the flavor.
5: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है
6: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: कुछ भी नहीं. Oura Debt Relief will do it for us.
7: क्या मतलब?
8: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
8: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो. 888-888-9914.
7: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
9: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
11: एंड वेलकम बैक दिस इज़ KZMP 104.9 FM फनेशा रेडियो पे मैं हूँ नीलम आपके साथ वेरी वेरी वार्म वेलकम प्यार भरा स्वागत आप सभी का यहाँ पे ऑन फनेशा आपका और हमारा साथ वीकेंड्स जी हाँ ये म्यूजिकल मुलाकातें होती है वीकेंड्स में सैटरडे आफ्टरनून 12 से 3 के बीच में एंड ऑन संडेज इट इज़ 12 to 2 PM हेल्थ इज़ वेल्थ अक्सर हम कहते हैं और बिल्कुल होनी ही चाहिए ये बातें हमारे जहन में क्योंकि भाई जान है तो जहान है तो उसके लिए चलिए मैं आपको पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर का नंबर दे देती हूँ लेकिन कभी कभी ये बात हो सकती है कि इंश्योरेंस ना हो या फिर आप आपके ही नेटवर्क में पैशन हेल्थ ना हो तो वेल यू कैन स्टिल गो टू देम एंड दे हैव अ ब्यूटीफुल प्लान जहां पर उसकी जानकारी आप ज़्यादा ले सकते हैं बाय कॉलिंग 214-666-6259 दे ऑफर प्राइमरी केयर प्रिवेंटिव केयर मेडिकेशन मैनेजमेंट एंड ऑल्सो एनुअल केयर वंस अगेन इट इज़ 214-666-6259 एंड इट पैशन हेल्थ फिजिशियंस डॉट कॉम अगर आपने अभी अभी रेडियो ट्यून इन किया है मैं आज कैसे डायरेक्टर की बात कर रही हूँ जो प्रोड्यूसर भी है डायरेक्टर भी है स्टोरी टेलर भी है स्टोरी राइटर भी है जिन्होंने 70s से अपनी डायरेक्टर की पहचान या स्ट्रगल शुरू कर दी थी बाय लेट 80s उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बना दी थी एक ऐसी आइडेंटिटी जो मैं मानती हूँ कि आज तक हमारे बॉलीवुड सिनेमा में ऐसे डायरेक्टर नहीं बने, एंड दैट इज महेश भट्ट, जिन्होंने अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को कभी भी पर्सनल नहीं रखा था. और उन्होंने जितनी भी फिल्म्स बनाई, जहाँ जहाँ भी उन्हें मौका मिला, अपने जो भी दर्द थे, जो भी घाव थे, जो भी जख्म थे, जो भी नाइंसाफी थी दुनिया से, सोसाइटी से, अपनी माँ के साथ, रिश्तों में, उनके पर्सनल रिश्तों में, सारी नाइंसाफी, वो जो भी उनका दर्द था, दिल का दर्द, उन्होंने अपनी फिल्म में उतार दिया. एंड दैट्स व्हाट महेश भट्ट इज ऑल अबाउट. लेट 80s, लेट 90s तक उन्होंने बहुत सारी फिल्म्स डायरेक्ट की, लेकिन बाद में उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की थी. उसकी भी बातें कुछ करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बहुत ही खूबसूरत एक रोमांटिक गीत उन्हीं की फिल्म से, राइट हियर ऑन 104.9 FM फनी शिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर.

बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना और फिर तेरी कहानी याद आई से लिया गया था। सो ऐसा नहीं था कि महेश भट्ट साहब ने सिर्फ अपनी पर्सनल कंट्रोवर्सीज पे या अपने घाव, अपने जख्म, अपने दर्द पर ही कहानियाँ बनाई थी। उन्होंने कहानियाँ कहीं कहीं ऐसे भी बनाई, फॉर एग्जांपल डैडी, आई डोंट थिंक दैट वाज रिलेटेड टू हिज पर्सनल लाइफ एट ऑल, लेकिन उन्होंने डैडी बनाई थी जहाँ पर पिता और पुत्री के रिश्तों की बात थी। सिमिलरली सारांश, इफ़ यू हैव सीन दैट फिल्म, वेरी वेरी ट्रेजिक, और इस तरह से उन्होंने उस फिल्म में एक कपल की बात दिखाई जिनका इकलौता बेटा नहीं रहा और किस तरह से दे हैव टू गो थ्रू सो मेनी डिफरेंट लेयर्स ऑफ करप्शन, पॉलिटिक्स एंड व्हाट नॉट। इस फिल्म में अनुपम खेर साहब ने जब हामी भरी थी इस फिल्म के लिए, ही वॉज ओनली 28 ईयर्स ओल्ड। जी हाँ, उनकी उम्र जो थी वो सिर्फ 28 साल की थी, लेकिन उन्होंने जो किरदार निभाया था वो था 60 प्लस का किरदार। उनके साथ रोहिणी हट्टंगडी भी थी। इस फिल्म में साबित कर दिया था, इट वॉज अर्ली 80s, कि महेश भट्ट इज़ नॉट हियर ओनली टू टॉक अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, और ही इज़ नॉट ओनली हियर टू टॉक अबाउट कि उनकी माँ के साथ क्या हुआ था या उनकी ज़िंदगी में क्या क्या दर्द उन्होंने सहन किए हैं। उन्होंने किसी के भी दर्द को पर्दे पर निकाला था, एंड दैट वॉज सारांश। इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भी भेजा गया था, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली थी हमें कोई भी बात इस फिल्म से, अवार्ड नहीं मिला था, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट इट वॉज सच अ ब्यूटिफुली वेल मेड फिल्म, एंड दैट वॉज सारांश। तो ये अर्ली 80s में उन्होंने बनाई थी, लेकिन धीरे धीरे 90s में कुछ रोमांटिक फिल्म भी वो बनाने लगे थे, जैसे कि दिल है कि मानता नहीं, एंड यू नो देर वॉज एट दैट टाइम आई थिंक नेपोटिज्म नाम का कोई वर्ड नहीं था जितना आज है करण जौहर की वजह से। बट एक बात बिल्कुल मैं अपनी राय देना चाहूँगी आफ्टर दिस सॉन्ग, कि उन पर भी आई एम श्योर इल्ज़ाम लगा होगा, बहुत सारे लगे होंगे नेपोटिज्म के, लेकिन जस्ट टू डिफेंड हिम कुछ मैं जो मैंने पढ़ा था आपको बताना चाहूँगी आफ्टर दिस सॉन्ग। एंड दिस इज ऑफकोर्स आप सभी का हमारा पसंदीदा गीत।

0: मुश्किल है बड़ी रस्म मोहब्बत, ये जानता ही नहीं जी बिल्कुल। और माहिर फट साहब जान गए थे रस्म मोहब्बत को और इसीलिए बहुत सारी ऐसी फिल्म बनाते थे। चलिए मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि जब हम नेपोटिज्म की बात करते हैं, माहिर फट साहब के बहुत सारे रिलेटिव्स रिश्तेदार हैं इस दिस इंडस्ट्री, आपको जितने भी नाम याद आते हैं मुझे बताइएगा। 104.9 FM फनीशा रेडियो पे मैं हूँ नीलम आपके साथ। सवाल मैंने पूछा है कि उनके परिवार के कितने भी सदस्य आपको याद आ रहे हैं, उनकी बेटियाँ, उनके भाई एंड उनके भतीजे, उनके भांजे वगैरह वगैरह, नाम बताएंगे मुझे आप ऑन 104.9 FM फनीशा रेडियो। बात कर रही हूँ मैं महेश भट्ट साहब की, और PM जे ज्वेल्स को भी याद कर ले साथ में, क्योंकि वहाँ पर आप जा सकते हैं गोल्ड डायमंड एंड ब्राइडल कलेक्शन के लिए, फॉर एनी सेलिब्रेशन, फॉर एनी एंड एवरी सेलिब्रेशन। इट इज़ PM जे ज्वेल्स, मेन स्ट्रीट फ्रिस्को में है लोकेटेड, क्योंकि हर ज्वेलरी दैट टेल्स योर स्टोरी। तो स्टोरी की बात चल रही है, स्टोरी टेलिंग की बात चल रही है, और सवाल मैंने पूछा है महेश भट्ट साहब के परिवार के लिए, एंड आप ऑनर है, बताइए आपका नाम क्या है?
1: आलिया भट्ट, पूजा भट्ट,
0: आप
1: मुकेश
0: यू नो व्हेन यू सेड आलिया भट्ट फॉर अ मिनट आई थॉट योर नेम इज आलिया भट्ट।
1: नो नो नो, वैशाली।
0: वैशाली जी, ओके, बताइए आलिया भट्ट, फिर
1: पूजा भट्ट, मुकेश भट्ट,
0: ओके,
1: व्हाट इज आलिया भट्ट मदर्स नेम, शाह,
0: सोनी रास्तान,
1: सोनी रास्तान।
0: थैंक यू वैशाली जी, थैंक यू सो मच। सो अगर आपको पता है और भी उनके रिश्तेदार तो मुझे बताइएगा कि कौन कौन से रिश्तेदार हैं उनके इंडस्ट्री में। एंड वेरी वेरी टैलेंटेड फैमिली, एक बात तो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी, वेरी टैलेंटेड फैमिली। फनीशा योर लाइव ऑन एयर, रेडियो की आवाज़ प्लीज़ कम कर दीजिएगा। यस सर, बताइए।
2: गुड आफ्टरनून, माय नेम इज केतन व्यास।
0: जी केतन सर, बताइए क्या है आपकी आपका जवाब?
2: मेरा जवाब ये है कि मुकेश, महेश भट्ट के बड़े भैया मुकेश भट्ट हैं, फिर उनका बेटा विक्रम भट्ट, आई थिंक उनके फादर थे नानालाल भट्ट, ये सारे फिल्म इंडस्ट्री के साथ में कनेक्शन था उनका। फिर उनकी वाइफ सोनी रास्तान, फिर बेटी पूजा भट्ट
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल,
2: फिर दूसरी बेटी आलिया भट्ट,
0: आलिया भट्ट जी जी,
2: और उनका एक भांजा है इमरान हाशमी।
0: वेरी गुड, आप पूरे परिवार के
2: नाम याद आ रहे हैं।
0: वेरी नाइस केतन जी, लेकिन जितने भी नाम है सही कहा आपने। एंड फनीश यू लाइव ऑन एयर।
3: हेलो,
0: यस
3: जी, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं
0: जी,
3: हमें अच्छा लग रहा है।
0: थैंक यू, थैंक यू, आपके अच्छे लगने के लिए हम आते हैं यहाँ पर।
3: दे रहे हैं और आंसर मुझे नहीं आता, वो जो बता रहे हैं सही ही बता रहे होंगे
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आपका नाम लेकिन बता दीजिए, आपका नाम क्या है? आयशा जी, थैंक यू आयशा जी। सो फनीशा रेडियो पे मैं हूँ नीलम आपके साथ, और नेपोटिज्म की जब भी हम बात सुनते हैं कहते, एंड यू नो आई बैक टू डिफर ऑन दैट नोट कि भाई अगर आपके टैलेंटेड बच्चे हैं तो है, अगर आपके बच्चे, इफ़ यू आर एन एक्टर एंड इफ़ योर किड इज टैलेंटेड और एक्टर बनना चाहते हैं तो जाएंगे एंड दे विल शाइन। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बड़े कलाकार हैं अगर आप आपके बच्चों को प्रमोट करेंगे तो यू विल बी ब्लेम्ड और एज यू नो आपको गिल्ट कैटेगरी में आपको खड़ा कर दिया जाएगा। मुकेश भट्ट हो या रॉबिन भट्ट हो या उनके जो भी भांजे हैं इमरान हाशमी, मोहित सूरी इज ऑल्सो उनके भांजे हैं, उनके बहन के बेटे हैं, आलिया भट्ट की बात कर लो या उनकी बड़ी बेटी है पूजा भट्ट है, सोनी राजदान एंड और भी उनके जो इतने परिवार, मैं ये मानती हूँ कि उनका परिवार पूरा टैलेंटेड रहा, वेरी वेरी टैलेंटेड फैमिली। उनके जो पिताजी है नानू भाई भट्ट थे, अभी तो नहीं होगे दुनिया में आई एम श्योर, उनके पिताजी नानू भाई भट्ट इन 30s एंड 40s के बॉलीवुड एरा में उनका बहुत बड़ा नाम था, ही वॉज ऑल्सो अ डायरेक्टर, तो कहीं ना कहीं वो फैमिली की लेगेसी रही। एंड महेश भट्ट साहब ने खुद एक बार ये कहा था कहीं पे, एंड एज आई सेड यू नो इन हिज इंटरव्यूज ही हैज़ बीन वेरी वेरी ओपन ट्रांसपेरेंट अबाउट हिज फैमिली, हिज व्यूज, हिज ओपिनियन। उन्होंने कहा था कि देखो मेरे परिवार में मुझे किसी ने सहारा नहीं मिला था, ही नेवर गॉट हिज फादर सपोर्ट, उन्हें कभी भी अपने पिता की तरफ से, अपने पिता के परिवार की तरफ से कोई भी सपोर्ट मिला था बड़े होते वक्त, बट ही वॉन्टेड टू डू दैट फॉर हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों के लिए उन्हें करना था, ही वॉन्टेड टू बिकम अ फादर फिगर फॉर हिज ब्रदर्स, दैट्स वॉट ही डिड। इन 90s और लेट 90s में उन्होंने विशेष फिल्म्स की एक प्रोडक्शन हाउस की जब स्थापना की थी जस्ट फॉर हिज ब्रदर्स, ताकि रॉबिन भट्ट और मुकेश भट्ट जो हो उनके भाई, उनके लिए फिल्म वो प्रोड्यूस कर पाए और उन्हें डायरेक्टर बना पाए। उनके भांजों के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया, इमरान हाशमी एंड मोहित सूरी उनके भांजे हैं। आलिया भट्ट वॉज सो टैलेंटेड कि उन्हें उनके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बट ही डिड दैट फॉर मैनी फिल्म फॉर पूजा भट्ट. तो कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि जब आपकी ज़िंदगी में आपको वो प्यार नहीं मिलता, वो सपोर्ट नहीं मिलता, तब वो आप बिल्कुल करना चाहते हैं आपके परिवार के लिए. ही नेवर गॉट दैट सपोर्ट फ्रॉम हिज पेरेंट्स और हिज फादर, बट ही वॉन्टेड टू बिकम अ फादर फिगर फॉर हिज फैमिली, फॉर हिज ब्रदर्स.

तू ही बता दे मुझे, चाहूँ मैं या ना चाहूँ। हो सकता है कि आप महेश भट्ट को इतना ना चाहते हो सकता है कि आपको उनके साथ बहुत सारी डिसएग्रीमेंट हो, उनकी फिल्मों पर आप बहस कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी पर, उनके बयान पर आपको सवाल उठ सकते हैं कि भाई उन्होंने इतने कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल क्यों किए मीडिया में, वगैरह वगैरह। लेकिन उनकी जो जर्नी रही है, उनकी सिनेमेटिक जर्नी है, एक बहुत ही दिलचस्प बात जैसे कि मैंने कहा एक रही, ज़िंदगी को उन्होंने अपनी जैसी थी वैसे ही अपने पर्दे पर दिखाया, अपने कैरेक्टर्स को ऐसा ही दिखाया जैसे वो खुद महसूस करते थे, ऐसे ही दुर्भ के साथ, घाव के साथ, जख्म के साथ, और वो कैरेक्टर दिखाए जो हमें सोचने पर कहीं ना कहीं मजबूर कर दिए। ही वॉज नेवर ऑल अबाउट पॉलिशिंग हिज कैरेक्टर्स, पॉलिशिंग हिज फिल्म या पॉलिशिंग हिज स्टेटमेंट्स इन पब्लिक। तो चाहे आप उन्हें पसंद कीजिए ना पसंद कीजिए, उनकी फिल्म देखिए ना देखिए, लेकिन उन्होंने अक्सर यही बात कही जो अपने दिल की रही। एंड देर आर वेरी वेरी रेयर पब्लिक फिगर्स आई वुड से, वेदर इट इज़ बॉलीवुड और एनी वेयर एल्स, जो कभी भी अपनी सोच पब्लिक में रखते नहीं डरते, या कभी अपनी सोच बड़े पर्दे पर रखने से नहीं डरते। एंड आई थिंक महेश भट्ट इज़ वन ऑफ दोज वेरी रेयर कैरेक्टर कि जो था वहीं दिखाया ऑन द बिग स्क्रीन। मैं हूँ नीलम आपके साथ एवरी वीकेंड।

0: Quadra in association with Passion Health Primary Care.
1: एक और लड्डू ले लो।
2: थोड़ी और बिरयानी।
1: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
3: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए।
4: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलॉन्ग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे ऑल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
5: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
6: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
4: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
6: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानीज और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
4: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
5: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
7: ये तारा वो तारा हर तारा।
8: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: That garba was totally worth it. We had so much fun.
14: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
13: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
4: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
15: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
4: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
15: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
16: तुमसे मिलके दिल का है।
4: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
15: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
17: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Fun Asia Radio.

एंड वेलकम बैक. दिस इज KZMP 104.9 FM. फनीशा रेडियो पे आप है मेरे यानी कि नीलम के साथ, और ये कार्यक्रम जो आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ उसका नाम है कम्युनिटी राउंडअप. कार्यक्रम हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए, आपके लिए हम प्रस्तुत करते हैं, जहाँ पर हमारी कोशिश होती है आप ही के जितने भी सोशल प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज, इवेंट्स होते हैं उसकी जानकारी हम हमारी कम्युनिटी तक पहुँचाते हैं, उसे प्रमोट करते हैं, आपके प्रतिनिधि से बातचीत भी करते हैं ड्यूरिंग दिस आवर एवरी सैटरडे. And it is on 104.9 FM Phoenicia Radio. Brought to you by our CEO Vaishali Thakkar. जी हाँ, an humble attempt by Vaishali Thakkar and entire Phoenicia team for the community. जी हाँ, आपसे बनता है, आप ही के लिए होता है ये कार्यक्रम जिसे हम प्रस्तुत करते हैं 2 से 3 के बीच में on 104.9 FM Phoenicia Radio. एक ऐसी आवाज जो आप सुनेंगे लाइव यहाँ पर आज शाम को, सोनू निगम जी हाँ, लाइव इन कॉन्सर्ट September 26th 8:30 PM आज शाम क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर में. अगर आपने अभी तक टिकट्स नहीं ली है, यू कैन डेफिनेटली कॉल 855-360-SHOWS. तो चलिए, अगर उनको याद किया है, उन्हीं की आवाज़ में एक बहुत ही खूबसूरत शिव भजन के साथ शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की.

सोनू निगम, वन सेकेंड, जैसे कि हमने कहा, आप बिल्कुल आज शाम इस आवाज को सुन सकते हैं लाइव, एंड दैट इज हैपनिंग एट 8:30 PM एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास। बातें चल रही है कम्युनिटी की, क्योंकि ये है कम्युनिटी का शो, आप ही के लिए बनता है ये कार्यक्रम, आप ही के लिए लाते हैं हम कार्यक्रम, जहां पर हम आपके लिए बहुत सारे कल्चर एक्टिविटीज़ और इवेंट्स की हम आपके लिए जानकारी लाते हैं। और जब कल्चर एक्टिविटीज़ और इवेंट्स की जानकारी की बात निकली है, बिल्कुल बहुत सारे नवरात्र और गरबा रास होने जा रहे हैं। कल भूलिएगा मत, दैट इज़ संडे एंड इट इज़ 27th of September, आप जा सकते हैं कीर्तिदान घड़वी को सुनने के लिए SLPS इवेंट सेंटर में, एंड दैट इज़ लोकेटेड इन अर्विंग। वंस अगेन, कीर्तिदान घड़वी हैपनिंग टुमारो एट SLPS इवेंट सेंटर, एंड ही इज़ अ ब्यूटिफुल वोकल सिंगर, जहाँ पर आप उनकी आवाज़ में डायरो भी सुनते हैं, गरबा रास भी सुनते हैं, बट ही विल बी लाइव हियर आपके लिए होगे कल गरबा रास के लिए एट SLPS इवेंट सेंटर।

कुछ इंस्पिरेशनल, कुछ मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल गाने आप ही की पसंद के होते हैं इस कार्यक्रम के दौरान, जिसका नाम है कम्युनिटी राउंड अप विथ मी योर होस्ट नीलम। और ये कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं शनिवार की दोपहर बिटवीन 2 and 3 PM। ब्रेस्ट कैंसर वॉक, जी हाँ, एंड दिस इज हैपनिंग ऑन October 1st, 2026, 8:30 AM till 11 AM, एंड द वेन्यू इज एट द साउंड। वंस अगेन इट इज लोकेशन एट द साउंड, October 1st, 8:30 AM till 11। एवरी स्टेप मेक्स अ डिफरेंस एंड दैट इज अ वॉक फॉर ब्रेस्ट कैंसर। तो बिल्कुल अगर आप उन्हें सपोर्ट करना चाहे, वंस अगेन द लोकेशन इज पेविलियन एट द साउंड बिटवीन 8:30 and 11 ऑन October 1st। 104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो पे ये आप सुन रहे कार्यक्रम जिसका नाम है आप ही के लिए एवरी सैटरडे बिटवीन 2 and 3 PM कम्युनिटी आउटरीच। और ये बातें, ये गाने आपके लिए, आप ही के साथ होते हैं टिल 3 PM।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Beta, 95% aaye?
4: Haan, mummy.
3: Good. Ab chaliye, papa, aap apna report card dikhaiye.
5: Mera?
3: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, sare accounts updated?
5: वो
2: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
6: वेट अ मिनट, you?
2: Did someone say $100 credit for pizza? If you have an Amex Platinum card, you may be eligible for a $100 credit at Fun Pizza Kitchen. Treat yourself to cheesy favorites, special flavors, and mouth-watering toppings that'll have you coming back for another slice. Just visit the Fun Pizza Kitchen Frisco location before September 30th. For eligibility and details, call the Frisco location or simply walk in. Fun Pizza Kitchen. Bring your appetite. We'll bring the flavor.
7: 5 to 8 straight from the heart. Kal Hindi Hindi Bol.
8: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. Main hoon Navneeta Khemka, realtor with Keller Williams Realty. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
2: Call Namrita Khemka at 347-449-4242.
7: Phone uthaye, number dabaye.
8: 347-449-4242.
9: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
10: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
9: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
10: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
11: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
2: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
11: Barista House, richness of biryani bliss.
2: Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice. Sathiya!
12: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
13: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
14: तुमसे मिलके दिल का है।
13: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
15: एंड वेलकम बैक, दिस इज़ KZMP 104.9 FM फनेशिया रेडियो पे आप है मेरी यानी कि नीलम के साथ। एंड दिस इज़ अ कम्युनिटी आउटरीच प्रेजेंटेशन, कम्युनिटी राउंड अप एवरी सैटरडे बिटवीन 2 and 3 PM बाय होस्टेड बाय मी योर होस्ट नीलम। एंड इट इज़ ब्रॉट टू यू बाय वैशाली ठक्कर, जी हाँ, सीईओ ऑफ फनीश नेटवर्क. अगर आपके साथ कोई अनफॉर्चुनेटली कार या ट्रक एक्सीडेंट है, इन्वॉल्व आप हो गए हैं अनफॉर्चुनेटली खुदा ना खास्ता, या फिर किसी स्लीप एंड फॉल एक्सीडेंट में, तो बिल्कुल आप अटर्नी ओमार को कॉल कर सकते हैं, जिनका नंबर मैं आपको दे देती हूँ. उसी के साथ मैं उनकी वेबसाइट भी आपको दे देती हूँ, क्योंकि अगर आप उनको कॉल करेंगे, देर आर नो चार्जेस. जी बिल्कुल, आपने सही सुना, यू डोंट हैव टू पे अनटिल यू विन. एंड द नंबर इज 4693005946 एंड द वेबसाइट इज attorneyomar.com. वंस अगेन, इट इज़ अ फ्री कंसल्टेशन, बिल्कुल फ्री है आपके लिए. तो वेबसाइट पे जाइए या उनको कॉल कर लीजिएगा attorneyomar.com. बहुत सारे इवेंट्स की हम आपको जानकारी देते हैं. उसी के साथ हमारे साथ किसी भी सामाजिक या धार्मिक संस्था के प्रतिनिधि भी जुड़ते हैं हर शनिवार की दोपहर टिल 3 PM. ये है कार्यक्रम आपका, हमारी पूरी कम्युनिटी का, ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो.
4: अपनी नौसिखिया कलम के नोक पे एक मुल्क के

0: दो मुल्क मिलकर आजादी आजादी खेल रहे हैं, इसलिए हमें अपना घर छोड़ना पड़ेगा।
1: 104.9 FM फनेशिया पे इस कार्यक्रम के दौरान बहुत सारे कम्युनिटी के इवेंट्स की जानकारी हम आपको देते हैं, एंड वन ऑफ दोज इवेंट इज गृह प्रवेश। जी हाँ, इट्स अ फ्री एंट्री फॉर एंटायर कम्युनिटी, फ्री पार्किंग, तो आप जा सकते हैं अगर आप अपने के सपनों के घर को लेना चाहते हैं अपने ही वतन में। जी हाँ, क्यों नहीं भाई, अपने वतन में अपना भी एक घर हो। तो यू कैन विजिट गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो प्रेजेंटेड बाय माई स्क्वायर फिट, जहाँ पर चेन्नई से लेके मुंबई, पुणे, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद बहुत सारे डेवलपर्स होंगे, बिल्डर्स होंगे, जिनसे आप मिल सकते हैं, उनके अपकमिंग एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स को सुन सकते हैं, उनके प्लान को सुन सकते हैं। एंड दैट इज़ ऑल हैपनिंग अंडर वन रूफ ऑन अक्टूबर 10th एंड अक्टूबर 11th फ्रॉम 10 AM टिल 8 PM एट हायट रीजेंसी इन फ्रिस्को। वंस अगेन, इट इज़ अ फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग हैपनिंग ऑन अक्टूबर 10th एंड 11th हायट रीजेंसी इन फ्रिस्को। ऐसे बहुत सारे और भी कार्यक्रम्स की जानकारी हम आपको देते ही रहेंगे, बहुत सारे इवेंट्स की जानकारी हम आपको देते रहेंगे थ्रू आउट द शो एवरी सैटरडे टिल 3 PM।
2: है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली कर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
3: ये हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर,
2: हाथ जिनमें हो जुनू कटते नहीं तलवार से,
3: खून से खेले
2: सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, जिन में हो जुनू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से।

से निकले ही थे बांध कर सर पे कफन।

सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. आप ही की पसंद के कुछ इंस्पिरेशनल एंड पेट्रियोटिक गाने सुनते हैं आप हमारे साथ 104.9 FM एशिया एवरी सैटरडे. चलिए कुछ इवेंट्स की हम आपको जानकारी दे दें. भारतीय सीनियर सिटीजन ऑफ डालस प्रस्तुत करते हैं आपके लिए नवरात्रि गरबारा सेलिब्रेशन October 24th, दैट इज सैटरडे, एंड वेन्यू इज इट इज इन मिडिल स्कूल, ऑटो मिडिल स्कूल इन प्लेनो. वंस अगेन इट इज भारतीय सीनियर सिटीजन ऑफ डालस सैटरडे October 24th, वेन्यू इज ऑटो मिडिल स्कूल इन प्लेनो. वैष्णव संघ ऑफ डालस प्रस्तुत करते हैं रासोत्सव October 11th बिटवीन 4 and 6 PM, एंड इट इज हैपनिंग वंस अगेन इन वाइट एलिमेंट्री इन प्लेनो टेक्सस, दैट इज वैष्णव संघ ऑफ डालस रासोत्सव. राधा कृष्ण टेम्पल प्रस्तुत करते हैं ग्रास गरबा सेलिब्रेशन 7 PM ऑनवर्ड्स, एंड दिस इज स्टार्टिंग वंस अगेन एंड ड्यूरिंग नवरात्रि October 10th सैटरडे टिल October 20th एट राधा कृष्ण टेम्पल ऑफ डालस. श्रीमद भागवत महापुराण एंड दैट इज हैपनिंग ज्ञान यज्ञ 26th of September, दैट इज टूडे, एंड इट इज स्टार्टिंग एट 6 PM इन द इवनिंग टिल 10th of October. वंस अगेन इट इज श्रीमद भागवत महापुराण हैपनिंग एट राधा कृष्ण टेम्पल ऑफ डालस. पार्थ ओझा हैपनिंग टुनाइट एंड दिस इज बाय गो DFW. वंस अगेन इट इज पार्थ ओझा गरबा हैपनिंग टुनाइट. October 3rd इज रास गरबा बाय सनी जाधव एंड दिस इज बाय DFW गुजराती समाज. विवायो श्रीनाथम हवेली स्टार्टिंग देयर गरबा ऑन October 9th एंड इट इज हैपनिंग ऑन फ्राइडे October 9th राधा, एंड दैट इज इन श्रीनाथम हवेली इन कॉपल टेक्सस. DFW हिंदू टेम्पल ऑल्सो स्टार्टिंग गरबा रास एंड दैट इज एवरी डे, दैट इज स्टार्टिंग ऑन 11th of October. संन्यास डे मेडिटेशन रिट्रीट, जी हाँ, September 25th को इसकी शुरुआत हो चुकी है. इट विल गो ऑल द वे टिल September 27th, डेनिसन टेक्सस, एंड इट इज oshoyuniversal.org, दैट इज अ वेबसाइट oshoyuniversal.org. रिदम्स ऑफ इंडिया सपोर्ट अ चाइल्ड एंड इट्स एक ऐसा ट्रस्ट है जो चाइल्ड को सपोर्ट करने के लिए होती है ये उनकी बातें, एंड दिस इज हैपनिंग वंस अगेन. आपको मैं उसकी जानकारी देती हूँ, दिस इज हैपनिंग सैटरडे एंड इट इज हैपनिंग अतिथि वेन्यू. ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम की हम आपको जानकारी देते रहेंगे ड्यूरिंग दिस शो, एंड इट इज हैपनिंग एवरी सैटरडे बिटवीन 2 and 3 PM, जिसका नाम है 104.9 FM फन एशिया रेडियो पे कम्युनिटी राउंड अप विथ मी योर होस्ट नीलम तवे.

मोहसे नैना मिलाई के 104.9 FM फनीशा, आप ही की पसंद के कुछ बहुत ही खूबसूरत इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल गाने, पेट्रियोटिक गाने भी सुनते हैं आप हमारे साथ एवरी वीकेंड, दैट इज सैटरडे 2 to 3 PM ऑन 104.9 FM फनीशा रेडियो, रिदम ऑफ इंडिया, एंड दैट इज अ सपोर्टिव चाइल्ड आपके लिए प्रस्तुत करते हैं ये कल संडे 27th of September हैपनिंग बिटवीन 5 and 8:30 PM अतिथि इवेंट हॉल। जी हाँ, ये है वेन्यू जहाँ पर आप बिल्कुल जा सकते हैं अतिथि इवेंट हॉल में। Sankar Eye Foundation, you must have heard about them, and now they are bringing you a charitable Bollywood Dandiya Jahaz, जहाँ पर आप जा सकते हैं डांडिया के लिए और आपकी हर एक contribution किसी की eye surgery में मदद हो सकती है। That is happening next Saturday, October 3rd at 7 PM, जी हाँ 7 to 11 PM, once again that is October 3rd by Sankar Eye Foundation। ज़्यादा जानकारी के लिए you can visit giftofvision.org, that is giftofvision.org, and this venue is 3601 Maple Shed Lane in Plano, that is Sankar Eye Foundation, Bollywood Dandiya।

जाते जाते एक बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी जो मैंने पढ़ी अभी इन रिसेंट पास्ट, एंड इतनी मुझे अच्छी लगी वो कहानी दैट आई थॉट कि मुझे आपको भी सुनानी ही है वो कहानी. एंड यू नो ड्यूरिंग दिस आवर बिल्कुल मेरी कोशिश होती है कि जैसे हम बहुत सारी कम्युनिटी की बातें करते हैं, कम्युनिटी इवेंट्स की बातें करते हैं, किसी भी प्रतिनिधि से, सामाजिक संस्था की प्रतिनिधि से बात करते हैं, वी ऑल्सो ट्राई टू टॉक अबाउट सम इंस्पिरेशनल टॉक्स और इंस्पिरेशनल स्टोरीज राइट हियर. सो एक छोटा सा बच्चा था, किसी दुकान के बाहर ही वॉज सेलिंग कुकीज़, अपनी स्कूल से कहा गया था, सो ही वॉज सेलिंग कुकीज़. तो एक नौजवान वहाँ से गुजर रहा था, उसने देखा एंड उसे लगा कि ये बच्चा बेचारा इतनी धूप में खड़ा हुआ है, एंड यू नो उसने कहा कि अच्छा एक कुकी के जितने भी रेट से उसने पूछे, तो उसने वो बच्चे ने कहा कि $2 समथिंग लाइक दैट. तो फिर उसको लगा कि इतनी गर्मी में ये बेचारा, इसके पास इतनी सारी कुकीज़ है, कब बेचेगा, कब घर पर जाएगा. सो ही सेड गिव मी एवरीथिंग वॉट यू हैव टूडे. बच्चे ने ना कहा, उससे इनकार कर दिया. उसने कहा नहीं आप अंकल यही एक ही पैकेट लीजिए, और इफ़ यू वॉन्ट टू बट नॉट एवरीथिंग. उसे बहुत ही हैरानी हुई वो अंकल को. उसे लगा कि अरे बेटा तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, इतनी गर्मी में इतनी धूप में क्यों यहाँ पे खड़े हो स्टोर के बाहर, मैं ले लेता हूँ सारी कुकीज़. उसने कहा नहीं अंकल, मुझे मेरी टीचर ने ये कहा है कि यू कैन नॉट कम होम अनटिल यू हियर नो फ्रॉम 10 पीपल. उसको बहुत ही हैरानी हुई वो जो नौजवान था उसे, कि 10 लोगों से रिजेक्शन सुनना बिकॉज मैं आई एम जस्ट सेइंग कि मैं ले लेता हूँ सारी कुकीज़. वहाँ दूर उसकी एक टीचर खड़ी हुई थी, वो नज़दीक आई और उसने कहा कि यस सर हाउ कैन आई हेल्प यू. तो उसने पूछा कि व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर इफ़ आई एम बाइंग एवरीथिंग, आप उसे क्यों उस बच्चे को कह रहे हो कि भाई आपको 10 लोग जहाँ पर इनकार ना कर दे दैन यू हैव टू स्टैंड हियर. तो उस टीचर ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया. उसने कहा कि देखो वी ऑलवेज टीच अवर किड्स कि हमें कैसे सफल होना है, हमें कैसे सब कुछ ज़िंदगी में हासिल करना है, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू डू दिस एंड बी डू दिस एंड यू नो वी टीच देम टू बी एम्बिशियस राइट इन एवरी वे, इन एवरी पॉसिबल वे, कि जहाँ पर लाइफ में कैसे आपको सक्सेस मिल सकती है. मैं मेरे किड्स को, स्टूडेंट्स को ये सिखाना चाहती हूँ कि सक्सेस से पहले आपको रिजेक्शन मिलेगी. सक्सेस तो मिलेगी ही लाइफ में, लेकिन ट्राई टू टेक रिजेक्शन विद द सेम ग्रेस एज यू टेक द सक्सेस. अगर ये बच्चा अभी 5 साल की उम्र में या 10 साल की उम्र में रिजेक्शन सीख जाएगा कि मुझे 10 लोगों ने ना कहा, नॉट दैट वन अंकल केम एंड ही गॉट ऑल द कुकीज़ एंड आई एम डन फॉर द डे, मुझे अब बस कुछ बेचना नहीं है, आई डोंट वॉन्ट टू टीच हिम दैट. आई वॉन्ट टू टीच हिम कि आपको 10 लोग आएंगे, 10 लोग मना भी करेंगे कि नहीं बेटा आज नहीं चाहिए, कुकी कौन खाएगा, वगैरह वगैरह. सो ही कैन लर्न इन हिज लाइफ. एंड इट वॉज सच ए ब्यूटिफुल स्टोरी कि ज़िंदगी में हम अक्सर अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि बस सफल आपको होना है, आपको अच्छे ग्रेड्स लाना है, आपको अच्छे कॉलेजेस में जाना है, बट वी नेवर टीच देम कि आपको किसी से इनकार भी सुनना है. एंड दैट वॉज द लेसन फॉर हिज दैट स्टूडेंट फॉर अ लाइफ टाइम, कि अगर आपको आज 10 लोगों ने इनकार कर दिया कुकीज़ के लिए, तो ज़िंदगी में कहीं पर भी आगे जाके अगर आपको 10 बार और रिजेक्शन मिलेंगे, तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे, डिसअपॉइंट नहीं होंगे लाइफ से, क्योंकि आपको पता है कि 11वीं बार कोई ज़रूर आएगा और मेरी सारी कुकीज़ ले जाएगा. एंड दैट इज़

अगर आपको 10 बार और रिजेक्शन मिलेंगे तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे, डिसअपॉइंट नहीं होंगे लाइफ से, क्योंकि आपको पता है कि 11वीं बार कोई ज़रूर आएगा और मेरी सारी कुकीज़ ले जाएगा, एंड दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट।

0: and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer and fresher home.
3: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
4: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
5: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
4: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
5: और एंटरटेनमेंट,
4: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
5: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
4: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
6: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
7: It's the time to clock out.
8: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, jahan tandoor ki smoky khushboo, sizzling flavors aur chatpate appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m., order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
9: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
10: Weekend ka plan abhi tak nahi bana? Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury or excitement, sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
11: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.

दूंगा दिल तेरा ले कहीं तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ बी ए डी शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना

0: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
2: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
3: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
2: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com। वी नीड टू टॉक।
4: अब क्या हुआ?
2: नथिंग, इट्स नॉट यू।
4: ओह नो,
2: इट्स द डिस्टेंस।
4: डिस्टेंस? वी लिव 10 मिनट्स अपार्ट।
2: अरे इट्स एक्चुअली नॉट यू, इट्स दैट ड्राइविंग ऑल द वे फॉर माय सैल्स हॉट चिकन।
5: इरविंग, दैट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इज ऑफिशियली ओवर। सैल्स हॉट चिकन इज नाउ इन इरविंग। योर क्रिस्पी चिकन, लोडेड सैंडविचेस एंड बोल्ड सैल्स फ्लेवर्स जस्ट गॉट अ होल लॉट क्लोजर। Sal's Hot Chicken Irving, same obsession, less distance.
6: Aji sunte ho?
7: Aji nahi, AG sunte hain.
8: The OG of tax planning, AG Fintax. Sunenge aapke financial concerns, denge smart solutions. Every Friday 9:45 AM only on Funasia Radio.
9: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
10: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
9: Fikar not. We have the perfect solution.
5: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
11: Shaadi biyah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
5: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
12: हेलो, मेरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन का स्टेटस क्या है?
13: सर, बढ़िया है। 50,000 इंप्रेशंस, 5,000 व्यूज और हंड्रेड्स ऑफ क्लिक्स।
12: ओके, लेकिन कस्टमर्स कितने आए?
13: पता नहीं।
5: एडवर्टाइजिंग का असली रिजल्ट क्लिक्स नहीं, कस्टमर्स हैं। इंट्रोड्यूसिंग स्मार्ट रीच AI, पावर्ड बाय रियल फुट ट्रैफिक एट्रीब्यूशन। विद स्मार्ट रीच AI, रीच लोकल कस्टमर्स, इवन कंपेटिटिव विजिटर्स अक्रॉस रेडियो, डिजिटल, स्ट्रीमिंग टीवी एंड ऑडियो। मेजर कॉल्स, बुकिंग्स, रिडेम्पशंस एंड एक्चुअल विजिट्स।
12: अब हुई ना स्मार्ट मार्केटिंग।
5: विजिट smartreachai.us। स्मार्ट रीच AI, टर्न अटेंशन इनटू कस्टमर्स।
14: स्मार्ट रीच AI, अ फाइनेंशियल नेटवर्क प्रोडक्ट।
15: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
5: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
15: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
5: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानीज और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
15: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
16: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।

0: सुन रहे थे आप ये कनाडा सॉन्ग ऑन 104.9 FM. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिल से. आई एम योर होस्ट अमरीन हसनात. आई बी विथ यू टिल 6 PM. हमारा ये सेगमेंट 5 बजे तक जारी रहेगा जिसमें हम आपको सुनवाएंगे रीजनल लैंग्वेजेस के गाने ऑल बाय रिक्वेस्ट. ऑल यू हैव टू डू इज कॉल अस एट 972-235-5555. बस ख्याल रखिए कि 5 से 10 मिनट का होल टाइम होगा. दैट्स वन. एंड सेकेंडली हम हर लैंग्वेज के सिर्फ दो ही गाने प्ले करते हैं. तो आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं. आपका नाम? हेलो
1: किशन
0: जी, आप ऑन एयर हैं. किशन जी बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: भोजपुरी.
0: भोजपुरी गाना. ऑल राइट, क्या नाम है आपके भोजपुरी गाने का?
1: गाने का नाम है ओ गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई बो.
0: ओ गंगा मैया. ओके
1: ओके, पियरी चढ़ाई बो.
0: ऑल राइट ओके. उस तरह का तो मुझे नहीं, मुझे लता जी का मिल रहा है एक. ये क्या पुराना गाना है कि नया गाना?
1: बहुत,
0: है
1: बहुत पुराना गाना है.
0: लता जी वाला है ये. एक है गंगा मैया में जब तक. नो दैट्स नॉट द राइट वन. फिर से बोलिए गंगा मैया. आगे थर्ड वर्ड क्या है?
1: तो है पियरी चढ़ाई बो.
0: तो है
1: पियरी
0: पियरी. ओके लेट्स सी. ओके वी आर गोना ट्राई. आई एम नॉट गोना गिव अप. लेट्स सी. ओके ठीक है, आई थिंक मुझे मिल गया. काफी पुराना, ब्लैक एंड व्हाइट. हाँ
1: राइट
0: ओके ठीक है, नो वरीज. आई प्लेड फॉर यू. किशन जी कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप हमें?
1: आर्लिंगटन.
0: आर्लिंगटन, थैंक यू फॉर योर कॉल. एंजॉय.

0: सुन रहे थे हम ये भोजपुरी भजन, होप यू एंजॉयड इट। किशन जी की थी फरमाइश। आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम? हेलो
1: जी, मैं राजीव बोल रहा हूँ।
0: जी राजीव साहब, बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: जी वो अभी अभी एक मूवी रिलीज हुई है, वन।
0: ओके, किस लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आप?
1: उसमें उसमें भोजपुरी एक गाना है, तितली अखियां, पलक का गाना हुआ है।
0: ओके, भोजपुरी सॉन्ग है तितली अखियां।
1: यस,
0: तितली
1: अखियां।
0: अखियां
1: मूवी का नाम है वन, वी वी ए एन।
0: वी वी ए एन, ओके ठीक है, देखते हैं। भोजपुरी गाना तितली अखियां आपने बोला?
1: बिल्कुल बिल्कुल, पलक का गाया हुआ है, पलक खुशहाल का।
0: पलक, अच्छा वो तो नहीं मिल रहा मुझे। लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड द राइट वन। नहीं, कुछ और नाम हो सकता है उस गाने का?
1: ये कि उस मूवी के कौन कौन से गाने हैं, मैं तो कई बार सुन चुका हूँ उसको।
0: आपने गाने का नाम बोला तितली अखियां।
1: हाँ
0: नहीं, एंड यू सेड इट्स अ भोजपुरी सॉन्ग।
1: हिंदी मूवी में भोजपुरी सॉन्ग है ये, और मैं अभी आपको बताता हूँ। समझो ना, ठुमक ठुमक, छठी मैया है।
0: आई एम सॉरी,
1: छठी मैया गाने का नाम।
0: सची मैया,
1: छठी मैया, छठी सी एच एच ए टी एच आई।
0: ओके,
1: स्पेस मैया।
0: ओके ठीक है, लेट्स सी इफ आई फाइंड इट नाउ। ओके आई गॉट इट, या दैट्स द, ओके गॉट इट नाउ, आई फाउंड इट। ठीक है, मैं आपके लिए प्ले करती हूँ, थैंक यू। और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
1: मैं तो मैकिनी से।
0: मैकिनी से, ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर कॉल। ये रहा आपका भोजपुरी सॉन्ग, थैंक यू।

0: अगर अभी अभी आपने ट्यून इन किया है तो स्वागत करती हूँ तमाम सुनने वालों का। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल से, पेश किया जा रहा है सैटरडे का स्पेशल सेगमेंट बोली प्यार की, जिसमें हम आपको बहुत प्यार से रीजनल लैंग्वेजेस के गाने सुनवाते हैं, वो भी आपकी फरमाइश पर। इस सेगमेंट में उर्दू, हिंदी या इंग्लिश के गाने नहीं, बल्कि तमाम कॉन्टिनेंटल रीजनल लैंग्वेजेस के गाने प्ले किए जाते हैं। सो फार दो भोजपुरी गाने हो चुके हैं, एंड व्हाट दैट मींस इज वी विल नॉट बी टेकिंग एनी मोर रिक्वेस्ट फॉर भोजपुरी सॉन्ग्स। यही इतनी ही हमारी वो है लिमिट, एज इन कंडीशंस हैं कि हम किसी भी रीजनल लैंग्वेज के सिर्फ दो ही गाने प्ले करते हैं। बट आई कीप गिविंग यू दी अपडेट, दैट वे यू नो कि भाई कौन कौन सी लैंग्वेजेस हो चुकी हैं। नेपाली, कनाडा, भोजपुरी गाने हमने आपको सुनवाए। आई डोंट नो माई सेल्फ कि अगला गाना कौन सी लैंग्वेज में होगा, बट आई डू वॉन्ट डू अ क्विक शाउट आउट फॉर टेक्सास प्राइमरी केयर, जो पिछले 13 साल से हमारी कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं। एंड देव गॉट अ ब्रांड न्यू नेम नाउ एंड अ सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन, लोनॉक्सी मेडिकल, founded by Dr. Mandeep Acharya. They bring everything under one roof, yani ke primary care, urgent care, labs, testing, x-ray, CT scan, cardiac diagnostics and med spa services, sab kuch ek hi jagah. And the best part, which I like, they're open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. so very convenient. You can walk in anytime, appointment wagaira ki koi zarurat nahi, bas naam yaad rakhe, Lonoxy Medical. All right, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। And bear in mind that your calls are answered in the order they are received, so I keep track of the time, so don't worry about it. Your call will be answered once it's connected. And the next person is on air, Fanisha Radio. आप on air हैं, आपका नाम?
1: हेलो, मैं पार्थ बोला
0: जी। पार्थ, क्या हाल है आपका?
1: बस बढ़िया, आप बताइए।
0: ऑलराइट, आई एम गुड। बताइए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: उड़िया संबलपुरी।
0: उड़िया सॉन्ग, ऑलराइट। बताइए क्या नाम है आपके गाने का?
1: हाई गो, एच ए ई
0: एच हाई गो। अच्छा,
1: एच ए ई
0: हाँ
1: गो जी ओ
0: हाई गो। ओके, क्या मतलब है इसका?
1: Hi, it's kind of hi.
0: Okay, all right.
1: I can't say the Odia, but yeah.
0: Okay, okay, no worries. I'll play it for you. कहाँ से कॉल कर रहे हैं पार्थ?
1: Irving.
0: Irving, thank you for your call. Here is your Odia song.

0: मॉर्निंग. आपका नाम? हेलो फनीशा रेडियो जी, आपका नाम?
1: मेरा नाम रेखा है.
0: जी रेखा, बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगी?
1: मैं कश्मीरी गाना रिक्वेस्ट करूंगी.
0: जी बोलिए, क्या नाम है आपके कश्मीरी सॉन्ग का?
1: इट्स प्रेक्यम्यू सनम्यानी, इट स्पेल्स एज CHE देन KAMU.
0: ओके, गॉट इट.
1: नेक्स्ट वर्ड इज
0: सोनी.
1: ONI.
0: गॉट इट, आई फाउंड इट, थैंक यू.
1: संग बशारिया बशीर.
0: ओके, आई विल प्ले दैट फॉर यू. कश्मीरी गाना है?
1: हाँ जी.
0: इंटरेस्टिंग, ओके, आई विल प्ले इट फॉर यू. और आप कहाँ से कॉल कर रही हैं हमें?
1: मैं रिकायल से हूँ.
0: ऑलराइट, थैंक यू, एंजॉय योर कश्मीरी सॉन्ग.

0: and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco, PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: ये लास्ट दिवाली पहना था ये नेहा की शादी में इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है
3: हे भगवान मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है
4: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बाली के
2: प्रभु डिस्काउंट भी मिलेगा
4: ऑफ कोर्स फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ तथास्तु
1: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास एलिगेंट साड़ीज ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड फ्रिस्को इंडियन अटायर फ्रिस्को योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन
5: अरे वो केक आया क्या
6: डीजे कौन हैंडल करेगा
3: डेकोर वाले को कॉल किया
6: बैंड बजाने से पहले मेरा ही बैंड बज गया
5: रिलैक्स ऑसम इवेंट्स को कॉल किया
6: ऑसम इवेंट्स
5: हाँ भाई वेडिंग हो बर्थडे बैश कॉर्पोरेट गाला या फुल ऑन कॉन्सर्ट नाइट अमरीन हसनात एंड अ टीम विल हैंडल एवरीथिंग
6: मतलब प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन टेंशन खत्म
5: नॉट जस्ट दैट बुक योर नेक्स्ट इवेंट एंड गेट फ्री प्रोफेशनल एमसीइंग बाय अमरीन हसनात हरसेल्फ
1: कॉल नाउ एट 214-725-7466 214-725-7466 and turn your celebration into an awesome event.
7: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin hai.
8: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. Ek hafta, 10 din, agle Tuesday.
9: Tarikh par tarikh.
1: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. Aaj bukhar, aaj doctor. Aaj infection, aaj doctor. Aaj annual checkup, aaj doctor. Plus 30 minutes of dedicated appointment time. Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
8: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
10: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था
3: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना उसका सिग्नेचर मिल गया सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो फेमस निहारी सिजलिंग ग्रिल्स क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो विजिट signaturecuisine.net सिग्नेचर क्विजिन हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर
11: इंडिया में घर खरीदना हुआ आसान गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है फ्रिस्को में अक्टूबर 10th एंड 11th हाथ रीजेंसी फ्रिस्को 10 a.m. टू 8 p.m. मुंबई बैंगलोर पुणे चेन्नई हैदराबाद एंड दिल्ली एनसीआर के टॉप डेवलपर्स से मिलने का एक ही मौका चूज योर होम फ्रॉम 200 प्लस प्रोजेक्ट फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग एन इवेंट बाय माई स्क्वायर फीट
12: हाई दिस इज दीपिका पादुकोण एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो
13: Welcome back to 104.9 FM Funisha Radio, bringing the community together. I am your host, Amreen Hasnat, and I'll be with you till 6 p.m. It is 4 minutes past four on this 26th of September, 2026. Umeed karti hu ki hamare tamam sunne wale jahan bhi hain, khairiyat se hain. Well, ladies and gentlemen, this is Boli Pyar Ki, yani ke the language of love, jisme hum play karte hain aapki request per regional languages ke gaane. Har language ke sirf do hi gaane play kiye jaate hain, yani ke two songs per language. Now, I'm going to keep giving you the update on which language songs we've played. So far, we did Nepali, Kannada, Uriya, as well as Kashmiri, and we've already played two Bhojpuri songs. Yani ke Bhojpuri gaano ki request ab hum nahi le payenge. I also want to mention that all of our lines are on hold right now. So if I've already spoken to you and asked you, requested you to hold, please stay on the line. Otherwise, you're going to go back in queue. The hold time currently is anywhere from 10 to 15 minutes, depending on when you called. The number is still the same, 972-235-5555. Let's see who's our next caller. Thank you so much for holding. Aap on air hai, aapka naam?
14: Sajjad Jiwani.
13: Ji, bataiye sir, kaun si language ka gana request karenge?
14: Gujarati song.
13: Gujarati song, alright. What's the name of your song?
14: Gotilo.
13: Gotilo, that is such a great song. I love listening to that.
14: And
13: Sajjad
14: sir, it's about time for Dandiyas and everything.
13: Yeah,
14: you know?
13: Bilkul. And kahan se call kar rahe hain aap hame Sajjad sahab?
14: Mirchi.
13: Thank you so much for your call. Yeah. Here is your Gujarati song.

0: Bhavna, you are absolutely right. Such a beautiful song. Obviously, I don't understand Kannada. लेकिन इसकी जो जो जो रिदम थी इस गाने की, जो उसकी ट्यून थी लिरिक्स से, जस्ट साउंडेड सो ब्यूटीफुल. एंड आई थिंक श्रेया घोषाल डिड अ ग्रेट जॉब ऑफ सिंगिंग इट. ब्यूटीफुल इंडीड. थैंक यू सो मच. 12 मिनट्स पास्ट 4, यू आर लिसनिंग टू बोली प्यार की ऑन 104.9 FM. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात. एंड यस, आई गॉट अ बंच ऑफ पीपल ऑन होल्ड. प्लीज बी पेशेंट, डू नॉट हैंग अप, अदरवाइज यू आर गोना एंड अप holding for even longer. Let's see who's our next caller. Fanisha Radio, aap on air hai. Thank you for holding. Aapka naam? Hello? Hello, please speak Hello? up. Fanisha Radio ji, aap on air hai. Aapka naam?
1: Hi, this is Arun.
0: Ji, Arun, boliye, kaun si language ka gana request karenge?
1: Yeah, there is a song called Rangabati in Odia.
0: Okay, Odia song. All right.
1: Yeah.
0: और आप हमसे, आप हमें कहाँ से कॉल कर रहे हैं सर?
1: प्रिंसटन, टेक्सास.
0: आई एम सॉरी, कहाँ से?
1: प्रिंसटन, टेक्सास.
0: प्रिंसटन, टेक्सास. ओके, मुझे लगा ह्यूस्टन. आई वाज लाइक वाओ, हम ह्यूस्टन में सुन रहे हैं. एनीवे, आई विल प्ले दैट सॉन्ग फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल एंड थैंक यू फॉर होल्डिंग.

0: was Basuri by Ali Sethi and Shay Gill. All right, guys, thank you so much for being such great listeners. I love the selection of music we have on Boli Pyar Ki. It's such a great variety. All right, let's see who's our next caller. Fanisha Radio, aap on air hai, aapka naam?
1: Hello?
0: Hello?
1: Ji, Malik bol raha hun.
0: Hello, Malik sahab, kya haal hai aapka?
1: Ji, welcome back.
0: Thank you so much. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है. आप बताइए क्या सुनेंगे आज, कौन सी लैंग्वेज का गाना प्ले करें आपके लिए?
1: ये पंजाबी सॉन्ग है, अताउल्ला ईसा खेलवी का है, कमीज तेरी काली
0: ते सोने फुला वाली.
1: सोने फुला वाली.
0: ऑलराइट, आई विल प्ले दैट फॉर यू. और आज आप हमें कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
1: डेनवर कोलोराडो.
0: Denver, Colorado. Say, all right, let me find a good version of the song for you and I will play it. Thank you so much for your call. Here is our second Punjabi song of the day. That means we won't be playing any more Punjabi songs for the segment.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
1: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो हैं। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
5: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masoori Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swaad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites jo aapko yahan pasand hai. Ab ek hi shopping trip mein zyada kaam niptaiye. Aur is summer zarur dekhiye. HEB ke naye DFW stores Mid-Cities, Irving aur Murphy mein khul rahe hain. To aaj hi apne nazdeeki HEB par jaye aur khareediye apne traditionals aur Texan favorites. HEB. Here everything is better.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
7: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: Ab to karna hi padega, madam.
8: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
1: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
9: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
1: That magic removal ho, love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
9: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
10: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
11: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
10: Miss Clicks.
12: 100 logon ne click bhi kiya.
10: Customers kitne aaye?
13: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
14: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Phanasia Network product.
15: Marvin Das and Bindas Services present the 6th annual South Asian Food Festival on October 31st at the Sound Venue in Coppell. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors, showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.
16: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Phanasia Radio.
17: स्वागत करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फनीशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त तमरीन हसनात. आई बी विथ यू टिल 6 PM. दिस इज बोली प्यार की सेगमेंट, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं रीजनल लैंग्वेजेस के गाने. सो फार वी हैव प्लेड two songs, as in two songs each, for Punjabi, Uriya, Bhojpuri and Kannada. That means we're not going to be taking any requests for these four languages. However, we still have room for all other languages, including Nepali, Kashmiri, Gujarati and Bangla. It is 35 minutes past 4 on this 26th of September. This part of our show brought to you by attorney Omar Khwajana. We don't want this to happen to you ever. However, God forbid, अगर आप किसी एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट का हिस्सा बनते हैं, अटर्नी उमर ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. ही नोज कि ये जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं ना, वो आपको लूटने के लिए बैठी होती हैं, बट ही हैज द एक्सपर्टीज टू मेक श्योर दैट you don't get less than what you deserve. So give him a call, 469-300-5046, or you can visit attorneyomar.com. Now, here's the other thing. They don't charge you any fees until you win. So nothing to worry about, right? Nothing to lose. So get in touch with them. That's attorney Omar Khwaja. All right, guys, let's see who's our next caller. Fanisha Radio, you're on the air. Who is this?
18: Hi, my name is Abhijit.
17: जी अभिजीत बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
18: मराठी.
17: मराठी, और राइट, पता नहीं क्यों मुझे लगा आप मराठी गाने की रिक्वेस्ट करेंगे, मेरे दिल ने ऐसा कहा. ओके, बोलिए क्या नाम है आपके गाने का?
18: खेल मांडला.
17: खेल मांडला.
18: Yes.
17: खेल मांडला, ये काफी फेमस गाना है, राइट? आई फील लाइक कि मैंने प्ले किया है पहले.
18: Yes.
17: Right? Yes. Okay. I'm gonna play that for you. और अभिजीत कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप हमें?
18: I am in Princeton right now, going home.
17: Okay. All right. Sounds good. ये रहा आपका मराठी सॉन्ग.

0: AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
1: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
2: Huzoor, aapko chunna hoga. Hum ya ye biryani?
3: Begum, mohabbat apni jagah, lekin barista ki Hyderabadi biryani apni jagah.
2: Aakhir kya hai is biryani mein?
3: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद.
4: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco. 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
0: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
4: Barista House, richness of biryani bliss.
5: Hello Texas Parivar, क्या आपको पता है देर इज अ फर्स्ट टाइम होम बायर प्रोग्राम अंडर फेनी एंड फ्रेडी फॉर कंफर्मिंग लोन्स दैट हेल्प्स यू टू गेट बेटर रेट्स बाय ऑलमोस्ट हाफ अ पॉइंट टू 1%. सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189 क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS 96641.
6: ये तारा वो तारा हर तारा.
7: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
0: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
8: Hi, I'm Rajkumar Rao and you're listening to the most popular FM station in the US. 104.9 FM, Fun Asia Radio.

तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। स्वागत करती हूँ तमाम सुनने वालों का। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू फन एशिया रेडियो। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल से, एंड इट इज नाउ 8 मिनट्स पास्ट 5 ऑन द 26th of September। मैंने सोचा कि आज आप लोगों से कुछ बातचीत करनी चाहिए, कुछ सवाल जवाब हो जाएं, कुछ आपसे आपके बारे में पूछा जाए। मैं तो अपने बारे में बात करती ही रहती हूँ, लेकिन आज कुछ आपसे जानना, कुछ आपसे सीखना चाहती हूँ। सोचा कि हम किसी से क्या सीख सकते हैं, वो क्या चीज़ है जो सब हमें सिखा सकते हैं। यू नो, लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव a medical background, right? So your knowledge and area of expertise would be, say, the healthcare industry. तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी में शायद कोई करियर एज सच नहीं है, या वो किसी इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है, एंड दैट्स ओके टू। तो ऐसा क्या है जिसके लिए आपका किसी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं? आई थॉट अबाउट इट एंड आई रियलाइज कि वो क्या एक चीज़ है जो सबके पास है, एंड यू नो व्हाट आई केम अप विद? जिंदगी। ये जिंदगी हमें खुदा ने दी, सबके पास जिंदगी है और इस जिंदगी को हमने जिया है, राइट? कुछ लोगों ने सिर्फ 20 साल जिया, 30 साल, 40, 50, एंड एज वी लिव्ड वी हैव लर्नड समथिंग, राइट? कुछ तो सीखा अपनी जिंदगी में। कभी कभी किसी अच्छी चीज के होने की वजह से आपने कुछ सीखा, कभी किसी हादसे की वजह से, कभी किसी धोखे की वजह से आपने कुछ सीखा, कभी किसी इंसान से आपने कुछ सीखा, कभी आपने कुछ खोकर कुछ सीखा। सो आई थॉट इट वुड बी ग्रेट इफ वी कुड शेयर आवर एक्सपीरियंसेस, what we have learned in life, that one experience that has had a profound impact on your life. Ek aisa tajruba, ek aisa experience jo aapko hua aapki life mein. You don't have to go into all details ki bhai mere sath aisa hua, mera dost tha, ye tha, wo tha. I don't want to know about all that. You could just do it very briefly, something that had such a great or intense impact on your life, कि उससे आपकी जिंदगी बदल गई या आपने अपने आप में कुछ बदलाव फील किया because of this particular incident or person. Because I thought ये तो हम सबकी जिंदगी में होता है, right? So I would love to hear from you if there's anything you would like to share. And again, you can remain anonymous. आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, वो हमारे लिए important नहीं है. You can just say, okay, hi, I just wanted to say blah, blah, blah, yada, yada, yada. Whatever. Jo kuch bhi aap comfortably share kar sakte hain. Because ho sakta hai ki aapka ye experience, aapka ye tajriba kisi aur ko kuch sikha de ya kisi aur ko aisi situation se bacha de. Waise to log kehte hain ki, you know, you have to experience things yourself. That's the only way you can learn. But I do feel that sometimes, you know, लोग जो इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, राइट? वो उनकी लाइफ का निचोड़ होता है, जो उन्होंने सीखा होता है। तो क्या पता आपने भी कुछ सीखा है जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैंने क्या सीखा है, आई थिंक आई स्टार्ट ऑफ विद दैट, कि आप किसी को कुछ प्रूव नहीं कर सकते अगर सामने वाला आपको समझना नहीं चाहता, या अगर वो आप पर यकीन नहीं करना चाहता तो आप कुछ भी कर लें, उसने नहीं मानना। इट्स लाइक अ माइंडसेट, यू नो, अगर किसी ने आपको एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रख दिया है, डाल दिया है, तो फिर वो हमेशा आपको वही समझेगा। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से देयर समवन जो चोर है, ठीक है, बहुत चोरी करता है, और उसके बाद उसे जेल हो जाती है, जेल से वो वापस आता है, एंड दिस पर्सन इज कम्प्लीटली रिफॉर्म्ड। बट यू नो व्हाट, जब वो अपने मोहल्ले में, अपनी फैमिली में, या अपने ग्रुप में, अपनी कम्युनिटी में वापस जाएगा, यू नो, अगर किसी ने उसे एक्सेप्ट नहीं करना या ये नहीं मानना कि वो अब चोर नहीं है, तो नो मैटर व्हाट ही डज, अगर वो किसी मंदिर या मस्जिद में जाकर काम करना शुरू कर दे, उन्हें तब भी लगेगा कि वो चोर ही है और वो बदल नहीं सकता। सो दैट इज माई ओपिनियन, बिकॉज आई थिंक देर आर पीपल हु फॉर्म अ सर्टन, आई गेस, ओपिनियन अबाउट यू, एंड नो मैटर व्हाट यू डू, देर गोना थिंक दैट वे अबाउट यू, एंड सो देर इज नथिंग यू कैन डू। सो आप सिर्फ वही कर सकते हैं जो आपने करना है। सो इफ देर इज समथिंग यू हैव लर्न आउट ऑफ योर लाइफ, यू नो, वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू, एंड ऑफ कोर्स द म्यूजिक विल कंटिन्यू। आई डोंट वांट दिस टू बी लाइक अ टॉक शो, इट्स गोना have music as well, because why else would you turn on the radio?

taken from the film Tu Jhooti Main Makkar. Pyar hota kai baar hai. All right, I've got a $10 food credit giveaway from Chandigarh Bites in Allen. And the way to win is, I'm going to play this song. Aur ye ek remake hai gaane ka. आपने मुझे ये बताना है कि ओरिजिनल गाना कौन सी मूवी से था. एंड इफ यू नो द आंसर, द फर्स्ट पर्सन टू गिव मी द करेक्ट आंसर विल विन दिस फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन. हमारा नंबर 972-235-5555. गाना ओरिजिनली कौन सी फिल्म से था. दिस इज अ रीमेक वर्जन इन द मूवी रईस.

कंग्रेचुलेशन सुप्रिया, बिल्कुल सही बताया। लैला में लैला ओरिजिनली गाना फिल्म कुर्बानी में था, एंड देन रईस मूवी में वी हर्ड द रीमेक। आई होप यू गाइस एंजॉयड द सॉन्ग एंड द शो। आपसे होगी कल मुलाकात, सेम प्लेस सेम टाइम, यानी कि राइट हियर ऑन 104.9 FM। दिस इज अमरीन हसनाद साइनिंग ऑफ फॉर दिल से।

अ वेरी गुड इवनिंग डैलस, आप सुन रहे हैं फाइनेंशियल रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूं आरजे सिम्मी। हमारा साथ होगा पूरे 9 बजे तक, यानी 3 घंटे ढेर सारा फन होने वाला है, धमाका होने वाला है और ढेर सारी प्यारी बातें भी होने वाली है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज का टॉपिक भी काफी इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे रेड फ्लैग्स वर्सेस ग्रीन फ्लैग्स के बारे में, लेकिन एक ट्विस्ट है। हम सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बातें नहीं करेंगे, हम हर किसी की बातें करेंगे। हो सकता है कि आपके फ्रेंड में आपको वो रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग दिखे, या तो फिर आपके कलीग में, आपके बॉस में, आपके रूममेट में, या आपके घर में भी। और आप सामने क्या देखना है भाई, हो सकता है हम ही किसी के लिए रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग हो। तो आज थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस भी होगा, लेकिन इसके पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूं, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग, किसे कहते हैं और सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या है, सबसे अंडररेटेड ग्रीन फ्लैग क्या है, मुझे आपसे जानना है। तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं @972-235-5555।

आज हम बात कर रहे हैं रेड फ्लैग्स एंड ग्रीन फ्लैग्स के बारे में, और बहुत लोगों को पता होगा कि ये एग्जैक्टली क्या मीन करते हैं, दोनों का क्या मतलब होता है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है. लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है, मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि जो रेड फ्लैग से शुरू करते हैं, ठीक है, कि रेड फ्लैग का मतलब होता है कि कोई ऐसा बिहेवियर या हैबिट जो आपको सिग्नल दे कि कुछ सही नहीं है, कुछ तो गलत है इस पर्सन में. जैसे कि कोई अगर हर बात पे झूठ बोल देता है तो फिर वो रेड फ्लैग है, कोई आपकी बाउंड्रीज रेस्पेक्ट नहीं करता तो भी वो रेड फ्लैग है, या फिर कोई हर प्रॉब्लम का ब्लेम अगर दूसरे पे डाल देता है तो भी वो रेड फ्लैग है. और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेड फ्लैग है जो कि हमारे दोस्तों में भी बहुत कॉमन है कि हम कैसे जज करते हैं. अगर आप किसी के साथ रेस्टोरेंट में गए हैं और वो आपसे बहुत अच्छे से प्यार से बात कर रहा है, सामने वाला पर्सन, लेकिन जब वेटर या सर्वर या फिर कोई और पर्सन आता है वहां पे तो वो उनसे बदतमीजी कर देते हैं या थोड़ा रूड सा हो जाते हैं, तो फिर अलर्ट है भाई आप लोगों के लिए कि वो ग्रीन फ्लैग नहीं है, वो रेड फ्लैग है. जरूरी नहीं कि सिर्फ आपके साथ वो इंसान अच्छा बिहेव कर रहा है तो वो अच्छा पर्सन हो, ये भी देखना होता है भाई कि वो बाकियों के साथ कैसा बिहेव कर रहा है. आई होप कि आपको रेड फ्लैग्स का मतलब समझ में आ गया होगा. अब मुझे बताइए कि आपने ऐसे रेड फ्लैग्स नोटिस किए हैं क्या किसी में. प्लीज कॉल मी एट 972-235-5555.

0: ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ NCR ಎಂದ ಟಾಪ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಫ್ ಕೆಳಗೆ. 200+ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಾಂಕ October 10th and 11th. ಸ್ಥಳ ಹಯಾತ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ, ಫ್ರಿಸ್ಕೋ. ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00 AM ರಾತ್ರಿ 8:00 PM. ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ, ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಅನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
1: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. Jahan tandoor ki smoky khushbu, sizzling flavors aur chatpate appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 PM. Order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
2: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
3: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
3: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
3: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
3: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
4: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG Fintax. Your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
5: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
6: Ya pehle us aadmi ka sign lekar aao jisne mere haath pe ye likh diya tha.
7: Sign milna mushkil hai, lekin Pleno mein zabardast tha na, uska signature mil gaya. Signature Cuisine in Pleno. Famous Nihari, sizzling grills, crispy fried chicken aur mouth watering paratha rolls. Aur koi bhi celebration ho to banquet services bhi. Located at Spring Creek and Alma East Pleno. Visit signaturecuisine.net. Signature Cuisine, har taste par apna सिग्नेचर।
8: ये लास्ट दिवाली पहना था, ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है।
9: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
10: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके।
11: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
10: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। Tathastu.
4: Discover stunning lehengas, elegant saris, bridal jewelry and festive styles for men and kids. All at Indian Attire on 2995 Preston Road, Frisco. Indian Attire, Frisco. Your divine destination for festive fashion.
12: That garba was totally worth it. We had so much fun.
13: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
12: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
14: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 AM on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 AM. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
15: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
16: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
4: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
17: तुमसे मिलके दिल का है।
16: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
4: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है।

आप सुन रहे हैं फनेश्वर रेडियो 104.9 FM और मैं हूँ आरजे सिमी। अगर आपको भी किसी चीज ने क्रेजी कर रखा है तो मैं बाकी चीजों की शायद मदद ना कर पाऊँ, लेकिन एक चीज है जो मैं बता सकती हूँ कि इसमें आपकी पक्की सी मदद हो जाएगी। और अगर आपको टेंशन हो रही है कि भाई कोई आपकी मदद कर दे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, रियल स्टेट अपॉर्चुनिटीज बता दे, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लान कहाँ ज्यादा ROI वगैरह मिल सकता है, या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग में हेल्प कर दे, अगर ये सोच के आप क्रेजी हो रहे हो तो बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि माई टाइम इक्विटी इज हियर लेड बाय CPA सुधीर पाई, जो कि ये सारे फाइनेंशियल सर्विसेज आपको ऑफर करते हैं, आपकी मदद करते हैं बेटर प्लानिंग में, फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो अगर आप उनको कॉल करना चाहते हैं तो नंबर है 4697021272, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, which is mytimeequity.com।

भाई हम तो रेडी हैं ये कहने के लिए कि हमें आपसे बहुत सारा प्यार है, लेकिन इतना आसान नहीं है। आपको थोड़ा सा ना ग्रीन फ्लैग बनना होगा। अब आप पूछेंगे कैसे, मैं बताती हूँ भाई। देखिए, ग्रीन फ्लैग बनने के ना छोटे छोटे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ क्यूज होते हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। नंबर वन ये है कि आपको आपने आपके पार्टनर की जो है बातें बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। जो अटेंशन टू डिटेल्स होते हैं ना, जैसे अगर सामने वाले ने मेंशन कर दिया कि भाई मुझे तो चॉकलेट पसंद है, तो आप जब नेक्स्ट टाइम उससे मिलने जाए या फिर कभी भी जब आप उससे मिलने जाए तो उसके लिए एक चॉकलेट केक खरीद लीजिए। तो पहला रूल यही है कि आपको सुनना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उनकी बातें ध्यान से। नंबर टू रूल ये है कि अगर आप डिसएग्री भी करते हैं उनसे तो थोड़ा रिस्पेक्टफुली कीजिए भाई। जैसे कि मैंने पहले बोला कि नंबर वन रूल है कि सुनिए, लेकिन ये नहीं कि हर बात में अग्री कीजिए। हो सकता है कि आपके ओपिनियंस डिफरेंट हो, तो आपको ना डिसएग्री भी रिस्पेक्टफुली करनी है। नंबर थ्री रूल जो है वो ये है कि आपको अपने पार्टनर से कोई जेलेसी, कोई कॉम्पिटिशन वगैरह नहीं रखना है। उसके सक्सेस को इक्वली सेलिब्रेट करना है, खुश होना है उनकी हर छोटी छोटी खुशी में और बड़ी बड़ी खुशी में। एंड नंबर फोर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसिस्टेंसी भाई, कंसिस्टेंसी इज द की। ये नहीं कि एक दिन ऐसा बहुत सारा प्यार दिखा दिया और नेक्स्ट डे ऐसा घोस्ट कर दिया कि पता नहीं यार कौन हो तुम, मैं नहीं जानता, या फिर इग्नोर करना शुरू कर दिया कि एक दिन बहुत सब कुछ एक ही दिन में दिखा दिया एंड बार जब नेक्स्ट टाइम आया तो आपने उनको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया। ऐसा ना करें। अगर आप बिजी भी हैं तो उनको बता दीजिए कि यार आज थोड़ा ना प्रॉब्लम चल रही है, तो समझिए तो सामने वाला भी आपकी बातें सुनेगा और समझेगा। अगर आपके पास भी ऐसे कुछ टिप्स हैं जो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर कर सकते हैं अबाउट बीइंग अ ग्रीन फ्लैग, तो बताइए हमें, कॉल कीजिए 9722355555।

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Restaurant choose karna ho? Google reviews. Hotel book karna ho? Google reviews. Lekin bachcho ke doctor ki jab baat aaye to ek hi review sabse important hota hai. Maa ka review.
4: Isliye Dr. Farhad has been recognized as a DFW Child Mom Approved Pediatrician for 4 consecutive years, 2023 through 2026. Meet Dr. Nishat Farhad at Passion Health Pediatrics, serving families at Frisco and Aubrey, starting at the end of August. Passion Health Primary Care, because every healthy smile begins with trusted care. Call 214-666-6259 and schedule your appointments today.
5: Hello, मेरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन का स्टेटस क्या है?
6: सर, बढ़िया है. 50,000 इंप्रेशंस, 5,000 व्यूज और हंड्रेड्स ऑफ क्लिक्स.
5: ओके, लेकिन कस्टमर्स कितने आए?
6: वो पता नहीं.
4: एडवर्टाइजिंग का असली रिजल्ट क्लिक्स नहीं, कस्टमर्स हैं. इंट्रोड्यूसिंग स्मार्ट रीच AI, पावर्ड बाय रियल फुट ट्रैफिक एट्रीब्यूशन. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits.
5: Ab hui na smart marketing.
4: Visit smartreachai.us. Smart Reach AI. Turn attention into customers.
7: Smart Reach AI, a Fun Asia Network product.
8: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar. खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
10: हुजूर, आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी.
11: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह.
10: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
11: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद.
12: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco. 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
4: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
12: Barista House, richness of biryani bliss.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9799